ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की तिथि 10, तदनुसार 31 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

थे श्रीकांत पारगांवकर और उनके साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में सुनवाते हैं ये पहली भक्ति रचना अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल और साथियों के स्वरों में ये भक्ति गीत। और इसी भक्ति गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम समर्पण अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः के 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में मृदुला भट्टाचार्य दास को। प्रातः 7 का समय होगा जोहार चाईबासा कार्यक्रम का। प्रातः 8 समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार प्रातः 8:15 पर। प्रातः 8:30 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। प्रातः 8:40 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज के कलाकार हैं विश्वनाथ महतो और साथ ही आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत। प्रातः 9 का समय होगा हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा। प्रातः 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। प्रातः 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः 10:30 पर रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से क्रिस्ट्रिस एंड बल्टी बॉय भारत हैं हम। 10:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। 10:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहां से आप सुनेंगे मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत की जनता के साथ संवाद। 11:30 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:55 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 3 आप सुनेंगे न्यूज इंडिया समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 3:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। संध्या 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 4:02 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। संध्या 5 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 5:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विवरण। संध्या 5:05 पर समय होगा कार्यक्रम जय भारती फौजी भाइयों को संबोधित। संध्या 5:30 पर किसान भाई को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6 मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या 6:30 पर कार्यक्रम होगा आपने लिखा। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7 और उसके बाद जिले में आज कल। संध्या 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8 समय होगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का।
रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं मृदुला भट्टाचार्य।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाई बासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में मृदुला भट्टाचार्य दास को।

श्रोताओं, इसी संगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुगम संगीत अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में मृदुला भट्टाचार्य दास को। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

कार्यक्रम जोहार चाय बासा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

और अब सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म उमराव जान का ये गाना। गीतकार सैयार और संगीतकार खय्याम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त के स्वर में फिल्म उसकी कहानी से ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद के स्वरों में फिल्म उसने कहा था का ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मुझ तुमसे अच्छा कौन है का ये गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। और अब सुनवाते हैं।

हवाओं में प्यार की बस्तियां पास होने लगी अब किसी

0: अब कहां जाए हम।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना मन्ना डे और साथियों के स्वरों में फिल्म उजाला का ये गाना। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनते हैं ये संदेश।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
5: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है।
6: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नहर में ना बले नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी हम बले रुड़ तबन में आले

0: मतलब पूरा ये है ना।
1: वरना मंगलोर आइकन गांव बारगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ मना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
2: नाम है रंगबला देवी गांव बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
3: तुम बुरा मिसिंग काम सोए अनिता काम सोए भरूपा ऐसे ना करना ऐसे दुकुरा मिना न्या यापा मेरे तपा मेरे ये वाह बेटा निका
4: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा उरो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनि में बुरी ने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दूर रूम को यहाँ तबो जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
5: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका
6: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
7: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम जोहार चाईबासा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब सुनवाते हैं मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म विश्वास का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म ये रात फिर ना आएगी का ये गीत, और अब सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में फिल्म उपहार का ये गाना।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म आखिरी मुजरा का ये गाना। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म आदमी का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म आदमी का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम जोहार चाय बासा अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

ये आकाशवाणी का चाई भाषा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
6: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क। उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर किए हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
3: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण

0: यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
4: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
3: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Lank. Dr. Jaishankar appreciated Myanmar's president's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Earlier, President of Myanmar began his 5-day visit to India.

0: with fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी पर देशवासियों से करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की हजारीबाग में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में मंथन तेज। झामुमो कांग्रेस के बीच राज्यसभा उम्मीदवार पर चर्चा। हेमंत सोरेन से फिर मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। साहिबगंज के युवक समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार। और आरडीसीए महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज। रातूरोड 11 और रॉक मिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जिले में प्रशासनिक स्तर पर नई टीम का गठन किया गया है और उप विकास आयुक्त को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2: तो दिशा कमेटी के माध्यम से ये तय किया है कि मेडिकल कॉलेज में डीडीसी को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनको दिया जाए ताकि उनके देख रेख में जो भी अव्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। सभी माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बताया है कि हर छोटी छोटी चीज की ओर उन्होंने ध्यान दिया है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बेहतर करेंगे। ऐसे जो एक्सपीरियंस रहा है हजारीबाग का बहुत अच्छा तो नहीं रहा है।
1: बैठक में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना प्राथमिकता होनी चाहिए और इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

0: स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अपने पूरी तरह से बीमार है, एक भी पैरामीटर पे वो खरा नहीं उतरा। पीएचडी का वही हालत है, बिजली विभाग का वही हालत है। कमी बेसी देखिएगा तो राज्य सरकार जो है ये बैसाखी पर है, मोटा मोटी यही हम लोग कह सकते हैं।
1: झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दलों के बीच उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। इसी सिलसिले में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि गठबंधन के सभी दलों से बातचीत की जाएगी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता मैपिंग की प्रगति और उससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलए 2 के साथ समन्वय स्थापित कर मतदाता मैपिंग कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक

0: बड़े बहुराज्य अभियान के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में झारखंड के साहिबगंज निवासी नीतीश पासवान समेत कुल 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आयोजित प्रेसवार्ता में विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित 29 और 30 मई की रात कई राज्यों के सुरक्षा कार्यालयों और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सटेंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सटेंडल एटीआईआर न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन दिवस के अवसर पर रांची में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो थीम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की। इस अवसर पर पहली बार मासिक धर्म में प्रवेश करने वाली किशोरियों को हाइजीन और पोषण किट प्रदान किया गया।
1: महामारी किसी तरह का कोई उसको सामाजिक गलत सोचना नहीं है, वो एक नेचुरल फेनोमेना है। सभी कस्तूरबा बालिका को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत एक एक वो इंसिनरेटर भी दिए हैं ताकि नैपकिन डिस्पोजल के लिए वो उपयोगी रहे, और जो सभी यहाँ बालिकाओं के लिए ट्रेनिंग भी दिए है।
0: रांची और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम के समक्ष झांगुर ग्रुप के प्रमुख और 5 लाख रुपए के इनामी अपराधी रामदेव उरांव ने अपने दो सहयोगियों प्रसाद उरांव और सुभाष उरांव के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के अनुसार रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने रांची गुमला सीमा क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान तीनों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया गया। बताया गया है कि वे झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटना चाहते थे। गिरिडीह जिले के नवडीहा पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए मूल्य की नकली शराब जब्त की है। खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान 61 पेटी तैयार नकली विदेशी शराब, 15 लीटर स्प्रिट, बड़ी संख्या में खाली बोतलें बरामद की गयी। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में आज वज्रपात के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी और सिमडेगा जिलों में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है।
2: जो लगातार थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उसके वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा रही है, तो हमारा अनुमान ये है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसको देखते हुए कई मेट्रोलॉजिकल सब रीजन के लिए जो है अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हवा की गति जो है वो भी काफी तेज रह सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है, चेतावनी भी जारी की गई है।
0: रांची जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित RDCA महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज रातू रोड 11 और रॉक मिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला जाएगा। यह मैच रांची के शाखा मैदान सेक्टर 2 में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण समारोह दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। रांची जिला क्रिकेट संघ ने खेल प्रेमियों को फाइनल मुकाबला देखने के लिए आमंत्रित किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार 9 आईएसआई के संदिग्धों की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा, देश में धमाकों की आतंकी साजिश नाकाम, साहिबगंज के युवक समेत 8 गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पहली झारखंड T20 की नीलामी पूरी, ईशान से महंगे बिके रॉबिनमेंट। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव के लिए मंथन तेज। दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस की लीड है, वैभव सूर्यवंशी को झारखंड सरकार बनाएगी स्वास्थ्य विभाग का

ब्रांड एम्बेसडर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी पर देशवासियों से करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की हजारीबाग में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में मंथन तेज, झामुमो कांग्रेस के बीच राज्यसभा उम्मीदवार पर चर्चा, हेमंत सोरेन से फिर मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, साहिबगंज के युवक समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार। और आरडीसीए महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज रातू रोड 11 और रॉकमिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच होगी, खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज के कलाकार हैं विश्वनाथ महतो एवं साथी। आज आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विश्वनाथ महतो और साथियों के स्वरों में कुरमाली लोकगीत। और इसी लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको विविध रंगी जानकारियां देते हैं। आज हम आपसे बातें करेंगे मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है।

0: इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकतानुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। क्या है फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल योजना? यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या 9090700489 पर संपर्क करें या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, जानकारी की बातों को यहीं विराम देते हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये संदेश।
1: से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो इन बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआड़ा धारे आम बोले रुआड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये
4: मोर नाम मंगल राय को गाँव बारीगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हतो तो कहाँ तब घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए है
6: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनुता थामसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुर मिना अन्य जापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
7: अन्य में तुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने कोड़ा मुनि में उड़ी ने बागिया तो किन्हें दुनिया से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दूर तुम कोई

0: pero kakabuho ilibuko ko ka kunel niya
1: aling muni suren pete apile tan aling si aja hurare minai ro jita hurare minai ro to bugin hurate sesen ka e uage bita uren ka ale ayanu tun teina min apile tan
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
3: सबसे पहले आप खुद ही हमारे
4: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम विविधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं भेंट वार्ता। विषय है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। भेंट वार्ताकार हैं अधिवक्ता अमर बख्शी और उनसे बातें कर रही हैं रेखा।
3: साथ हैं अधिवक्ता अमर बख्शी, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम निषेध एवं निवारण संबंधी कानून के बारे में। आपका हमारे कार्यक्रम मनोरमा में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप बताइए कि यौन उत्पीड़न क्या है।
5: मैडम, ये जो यौन उत्पीड़न जो समस्या हम लोगों के सामने आ रही है बराबर अभी, इसके लिए ये समस्या आज की नई नहीं है, पुरानी समस्या है और इसके लिए पहले से कानून बना हुआ है। भारतीय दंड विधान के सेक्शन 354A में भी इसका प्रावधान है, मगर अभी वर्तमान समय में महिलाओं का चूंकि कार्यस्थल में जाना, घर से बाहर आके जॉब करना, ये पहले के मुकाबले बढ़ा है और उन पर अपराध भी इस तरह का बढ़ा है, तो इस सब को देखते हुए 2013 में ये कानून लाया गया।
3: अच्छा।
5: और इसमें इसके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है, खास प्रावधान किया गया है ताकि इस संबंध में त्वरित कार्रवाई हो सके और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
3: अच्छा, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत किस तरह की समस्याएं आती है महिलाओं के साथ?
5: जैसे किसी के साथ शारीरिक रूप से कोई एडवांसमेंट होता है।
3: अच्छा।
5: किसी तरह की ये धमकी दी जाती है, अशोभनीय चित्र दिखाया जाता है या अशोभनीय जेस्चर करके दिखाया जाता है, जेस्चर जो हुआ वो सारे शामिल होते हैं इसमें।
3: अच्छा।
5: और किसी कारण से धमकी देना कि भाई कुछ ऐसा घटना है, तुम अगर रिपोर्ट नहीं करो, ये सब उसी में शामिल होता
3: है। अच्छा।
5: और ये जो है आपके जो कहीं भी काम करती है, डेली वेजेस पे काम करते हैं, घरेलू जो एड है।
3: अच्छा।
5: वो जो करती हैं गांव महिलाएं वो शामिल है, सरकारी कार्यालय में हुआ,
3: प्राइवेट
5: संस्था हुआ, कहीं भी है, फैक्ट्री है, जहां भी, सब में इसमें लागू होता ही है।
3: सर, इसकी शिकायत कहां की जानी चाहिए?
5: देखिये, ये जो कानून 2013 का है, इसके तुरंत और शिकायत के लिए 2 तरह की कमेटियों का गठन किया गया है, गठन का प्रावधान है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी।
3: अच्छा।
5: जो होता है आंतरिक शिकायत जो कमेटी है।
3: अच्छा।
5: वो हर जहां कार्यस्थल है उसके अंतर्गत ये
3: कमेटी
5: बनाई जाती है। और एक होती है लोकल कंप्लेंट कमेटी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में वहां के जो उपायुक्त हैं, जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये गठित किया जाता है।
3: अच्छा।
5: दोनों कमेटी में जो खास बात है
3: जी,
5: कि दोनों कमेटी में 50% कुल स्ट्रेंथ का 50% जो मेंबर रहेंगे।
3: अच्छा।
5: वो महिलाएं होंगी,
3: महिलाएं ही हों,
5: ताकि महिलाएं जो हैं, जो महिलाओं की शिकायत जो है उनकी समस्या का सही ढंग से समाधान कर सके
3: जी,
5: और महिला को भी वहां शिकायत करने में किसी तरह की असुविधा
3: ना।

0: असु, असुविधा या किसी तरह की दिक्कत पेश ना हो
1: ना।
0: जी,
1: हर तरह की समस्या को शेयर कर,
0: हाँ, वो आराम से बोल सकती है वहाँ पे।
1: जी सर, शिकायत करने के लिए क्या कोई निश्चित समय सीमा होती है?
0: हाँ, इसके लिए समय सीमा निर्धारित है। इस तरह की घटना पे होती है तो 3 महीने के अंदर वो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जो है,
1: अच्छा,
0: उसमें शिकायत करनी है।
1: अच्छा सर, ये जरूरी है कि वो सबसे पहले इंटरनल कमेटी में ही करे या लोकल कमेटी में, कोई इसका प्रोसेस है क्या?
0: हाँ, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर महिलाएं हैं कमेटी की मेंबर, 50% जो है, तो इसलिए किया गया कि तुरंत वहाँ शिकायत की जाए।
1: अच्छा।
0: और शिकायत लिखित हो जाए तो क्या होता है कि तुरंत कार्रवाई होती है इसमें।
1: अच्छा जी सर, अगर 3 महीने के अंदर तक महिलाएं नहीं कर पाए, अपना कंप्लेन नहीं कर पाए कमेटी में, तो क्या इसकी समय बढ़ाई जा सकती है?
0: वो कारण बताएंगे।
1: अच्छा,
0: कारण बता के दे सकती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, हम प्रेशर में थे या हम ये झिझक के वजह से,
1: अच्छा,
0: इस चीज को सामने लाने में हमको समय लगा।
1: अच्छा।
0: या हम लोग प्रयास कर रहे थे अपने लेवल से इसको सेटल करने का
1: जी,
0: कि आगे ऐसा नहीं हो, कुछ कारण दिखाना पड़ेगा कि देरी क्यों हुआ।
1: अच्छा।
0: मगर देरी ना हो वो ज्यादा बेहतर है
1: जी, 3 महीने में ही हो जाना चाहिए
0: जी।
1: अच्छा, इसकी शिकायत कैसे की जाती है?
0: कोई इसका लिखित फॉर्मेट नहीं है, कुछ नहीं है, जो नॉर्मल शिकायत करते हैं।
1: अच्छा।
0: वो लिख के देना है, जो घटना घटा है उसको लिख के देना है,
1: जैसे एक आवेदन पत्र में लिख के,
0: आवेदन पत्र के हिसाब से कि भाई ऐसे मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं हमारे साथ इस तरह अमुक तारीख को अमुक व्यक्ति के द्वारा इस तरह का हरकत किया गया जो हमारे लिए अशोभनीय है और हम उसको अपने को असहज महसूस करते हैं और इस तरह का जो घटना है उससे हमको काम करने में दिक्कत हो रही है।
1: अच्छा।
0: हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं
1: जी।
0: ये जो भी बातें हमको लिख के देना है
1: जी। सर, क्या पीड़ित महिला अगर खुद से अगर शिकायत नहीं कर पाती है तो क्या कोई उसके बदले भी कर सकता है जो जानता है इस बारे में?
0: नहीं, इसमें तो
1: या उसके फैमिली मेंबर या उसके कोई दोस्त वगैरह,
0: प्रावधान जो है उसमें इनको खुद ही आना चाहिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वही जो है वो बात बताएगी, और ऐसे जो हम लोग का यहाँ आईपीसी में होता है उसमें तो महिला खुद भी आ सकती है।
1: अच्छा।
0: थाना जाने के लिए या उनके कोई परिवार के लोग भी आ सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है।
1: अच्छा।
0: मगर जहाँ तक इस कानून का प्रावधान है जो हम लोग 2013 का बात कर रहे हैं, इसमें महिला को खुद आगे आना है और इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी में शिकायत करेंगे।
1: अच्छा। वो डायरेक्ट थाना नहीं जा सकती?
0: नहीं, थाना जाने में रुकावट नहीं है।
1: जा सकते,
0: वहां तो कोई रुकावट नहीं, उसके लिए तो आईपीसी का प्रावधान है।
1: अच्छा जी,
0: वो तो प्रावधान हमेशा है।
1: ये जरूरी नहीं है कि वो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी में ही जाए?
0: नहीं, इस प्रावधान से हम लोग चलेंगे तो इंटरनल कमेटी लोकल कमेटी दो है।
1: अच्छा।
0: और मगर इस कानून के अलावा जैसे हम शुरू में ही बताए कि भारतीय दंड विधान जो है 354A जो है, 354 पूरा उसी के लिए बना हुआ है
1: जी।
0: तो उसमें जो है उसके अंतर्गत थाना में शिकायत हो सकती है,
1: हो सकती
0: है। वो आईपीसी के अंतर्गत चलेगा।
1: अच्छा।
0: वर्क प्लेस वाला अलग हो गया, वो जनरल हो गया अलग हो गया।
1: अच्छा, वर्क प्लेस के लिए स्पेशली ये 2013 वाला अधिनियम है।
0: जी
1: सर। अच्छा, शिकायत करने के बाद क्या होता है, कुछ इसका एक्शन कैसे लिया जाता है?
0: ये जैसे शिकायत दर्ज होगी वहाँ पर इंटरनल कमेटी में, तो वहाँ पर जो संबंधित व्यक्ति है जिसके खिलाफ में शिकायत किया गया है
1: जी,
0: उसको बुलवाया जाएगा वहाँ पे और 7 दिन के अंदर वहाँ सुनवाई करनी है।
1: अच्छा।
0: और उसमें वो निर्णय लेंगे, उनको उनके खिलाफ में अगर कुछ दोषी पाया जाता है तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो चलेगा
1: जी,
0: उनको डिपार्टमेंट के द्वारा जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो रहेगा, और अगर जैसा उनका होगा दोषी पाते हैं तो उसके हिसाब से उनके दंड के, उनका कितना गंभीर मामला है उसके हिसाब से वो निर्णय लेंगे।
1: अच्छा, दंड का क्या प्रावधान है सर?
0: दंड के लिए तो वो लोग डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग चलाएंगे, और ऐसे अगर कोर्ट में मैटर आता है तो पहला ऑफेंस के लिए 10,000 का फाइन है।
1: अच्छा।
0: और फिर अगर ये ऑफेंस को फिर दोहराया जाता है।
1: अच्छा।
0: दूसरा या तीसरा,
1: मतलब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अगर
0: किसी भी महिला के साथ होता है।
1: अच्छा।
0: अगर वही व्यक्ति रिपीट करता है इस तरह का हरकत जो है तो उसका पनिशमेंट 50,000 तक भी जा सकता है फाइन जो है।
1: अच्छा। किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाती है सर?
0: नहीं, सजा के बारे में तो सजा यही है, फाइनेंशियल सजा, आर्थिक सजा है।
1: अच्छा।
0: और सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग जो होता है
1: जी,
0: सस्पेंशन हो सकता है।

0: नौकरी से निकाल सकते हैं
1: जी।
0: सर अगर इस ये के जरिए, जैसे ये प्रावधान के जरिए यदि ऐसा पाया गया कि ऐसा होता ना कि कभी कभी दुश्मनी से भी लोग शिकायत करते हैं, अगर इसमें महिलाओं की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है तो उनके लिए क्या प्रेफरेंस है?
1: अगर शिकायत झूठा पाया जाता है
0: जी,
1: तब तो जो निर्णय लेगी इंटरनल कमेटी,
0: अच्छा,
1: तो उसके ऊपर कमेटी निर्णय ले सकती है,
0: अच्छा,
1: कि भाई ये शिकायत आपने गलत किया, आइंदा इस तरह का मत कीजिए, जो भी उनका निर्णय होगा
0: जी।
1: उसके लिए भी प्रावधान है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आइंदा जो भी कानून बनता है
0: जी,
1: उसका जो अच्छा जो उसका पहलू है उसका एक नकारात्मक पहलू भी होता है, उसका गलत ढंग से बदला लेने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि 498A के बारे में बहुत हुआ था कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया महिला को पति के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा। शुरू में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ, तुरंत जेल भेज दिया गया, मगर ये पाया गया कि नहीं इसका गलत उपयोग हो रहा है, तब उसमें भी कुछ रोक लगाया गया
0: जी।
1: तो इसी तरह से इसमें भी वही चीज है कि झूठा शिकायत कुछ अगर होता है, चूंकि यहाँ तुरंत निर्णय लेना है कमेटी को
0: जी हाँ,
1: तो 7 दिन के अंदर निर्णय लेना है, तो जो आरोप लगाया जा रहा है और जिसके विरुद्ध आरोप है वहाँ और लोग भी काम करते हैं, सबसे पूछ करके जो निर्णय पाया जाएगा कि हाँ गलत हुआ है तो गलत सजा मिलेगा, और अगर गलती नहीं हुआ है या मान लीजिए जैसे बताया कि कुछ संदेह में या कुछ समझने में गलत हुई या किसी को फंसाने के लिए केस कर दिया गया या शिकायत कर दिया गया, तो उसके लिए फिर वो निपटेगी वहाँ की कमेटी है वहाँ पर
0: जी। यानी इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, है ना सर?
1: हाँ, एविडेंस तो वहाँ आ जाएगा, जो भी घटनास्थल पे हुआ है तो महिला बोलेगी
0: जी।
1: और इसमें तो जैसे हमारा जितना भी कानून है, इस तरह की घटना के लिए आई विटनेस जरूरी नहीं है
0: जी।
1: ये घटना जो है कहीं पब्लिकली मान लीजिए हो भी रहा है तो मौका देख के करते हैं
0: जी,
1: तो उसमें उनको ठोस सबूत देना पड़ेगा, सबूत तो लाएंगे ही वो
0: जी।
1: और उनका बात को ज्यादा बिलीव भी किया जाता है, मगर वो जो तर्कसंगत होनी चाहिए
0: जी।
1: तो जो कमिटी का काम वही है कि वो उसको उसका शिकायत की गंभीरता, उसकी सच्चाई
0: जी,
1: वो परखे वो
0: जी। सर इस अधिनियम के तहत क्या महिलाओं को किसी तरह का छुट्टी का प्रावधान है?
1: हाँ, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि इस तरह की कोई घटना होती है, कोई शिकायत महिलाएं करती हैं, तो वो चाहें तो 3 महीने तक वो जहाँ अपने कार्यस्थल से छुट्टी ले सकती हैं, और ये छुट्टी जो उनको मिलेगी 3 महीने की, उसमें उनका वेतन भत्ता कोई चीज का पेमेंट रुकेगा नहीं।
0: अच्छा,
1: वो सारा उनको मिलेगा,
0: सारा पेमेंट मिल जाएगा। सर इस विषय में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न ना हो, इस पर रोक लगाए कैसे महिलाएं, इस विषय में आप हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: इसमें सबसे बड़ी बात है कि खुद को अलर्ट रहना पड़ेगा और जानकारी होनी चाहिए कि कानून उनकी रक्षा के लिए कहाँ क्या क्या चीज प्रावधान दे रहा है, और सारे प्रावधानों का इस्तेमाल करना है और तुरंत करना है, इसमें देर होना नहीं चाहिए, तुरंत उसको इस्तेमाल करना है और आपको न्याय मिलेगा
0: जी,
1: है ना?
0: यानी महिलाओं को सबसे पहले आगे आना है,
1: आगे आना है,
0: और जो भी अगर उनके साथ ऐसा कुछ हरकत हो रहा है या होता है
1: जी,
0: तो सबसे पहले उनको आगे आके खड़ा होना है, हिम्मत जुटाना है,
1: हिम्मत जुटाना है, और जो संस्था जो बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है कानून के मुताबिक, इसमें उनको चूंकि महिलाएं इसीलिए उनको दिया गया है 50% मेंबर्स महिलाएं रहेंगी, उनको बेझिझक अपना परेशानी जो है वो बताना है। ये इसलिए है, देखिए जरूरी है कि आज के दिन में महिलाएं बाहर काम करने निकल रही हैं, अगर उनको वहाँ का माहौल सहज नहीं मिलेगा काम करने के लायक, तो उनका कार्य कुशलता, उनका कार्य करने का जो जोश है सब कुछ वो
0: सब में
1: प्रभावित होगा, बाधा आएगा। इसीलिए इसमें कोई मन में डर रखना नहीं है कि क्या होगा, इस तरह को जब तक हम लोग आगे बढ़ के नहीं रोकेंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा
0: जी।
1: तो इस तरह की घटनाओं को रोकथाम करने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को आगे आना है, महिलाएं आगे आई हैं, इस तरह का कानून लाया भी गया है
0: जी।
1: और आगे उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये महिलाओं हमारी जो

0: उनकी जिम्मेदारी बनती है,
1: जी।
0: आगे लाएं, आपको कानून साथ में है, आपको मदद मिलेगी।
1: जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम आशा करते हैं कि जो हमारी बहनें इस कार्यक्रम को सुन रही होंगी तो वो जरूर इसका लाभ लेंगी। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। जानकारी दे रहे थे अधिवक्ता अमर बख्शी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वरों में।

ये आकाशवाणी का चाई बासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम रसरंजन में सुनवाते हैं ये पहला गीत विनोद राठौर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। फिल्म है याराना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू के स्वर में फिल्म जख्म का ये गाना, बोल आनंद बख्शी के और संगीत एमएम करीम का। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन, और अब सुनते हैं श्रेया घोषाल के स्वर में फिल्म जहर का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म यंगिस्तान का ये गीत। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम रसरंजन अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत कुमार सानू के स्वर में। फिल्म का नाम है ये है मुंबई मेरी जान। बोल आनंद इंदीवर के और संगीत जतिन ललित का।

और अब सुनवा रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक के आवाजों में फिल्म यस बॉस का ये गीत। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार जतिन ललित।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म यस बॉस का ये गीत, आवाज अभिजीत और साथियों की। और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
8: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म युवा का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आसिकी 2 का ये गीत, आवाज़ श्रेया घोषाल की। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे क्रिस ट्रेस एंड बल्टी बॉय, भारत हैं हम।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपके अपने प्रोग्राम जोहार रांची में। और आज के इस प्रोग्राम के सफर में एक बार फिर आपकी हम सफर है, आपकी दोस्त शिल्पी
4: और मैं साथ में सिल्वा। दोस्तों कहते हैं ना कि आसमान की इच्छा और जमीन की तलाश कर, तेरे अंदर सब कुछ है बस खुद पर विश्वास रख।
3: बिल्कुल, और विश्वास के साथ साथ उम्मीद का दामन भी थामे रखना है, क्योंकि कई बार जब हमें ऐसा लगने लगता है ना कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, ऐसे में ईश्वर हमें कोई चमत्कार दिखा देता है और अपनी रहमत बरसा देता है।
4: तो इसे विश्वास और उम्मीद का दामन थामे चल पड़ते हैं आज के हमारे एक और सफर पर, और कहते हैं
3: जोहार।

0: वैसे तो कैलेंडर की हर तारीख कुछ खास होती है, लेकिन 31 मई का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किए जाने की वजह से अपनी खास अहमियत रखता है। सन 1921 में गांधी जी ने आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत और संशोधित किया था।
1: सन 1867 में आज के ही दिन मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और सन 1969 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई।
0: सन 1964 में मुंबई में इलेक्ट्रिक ट्राम आज के दिन अंतिम बार चली थी और सन 1977 में आज ही के दिन भारतीय सेना के एक दल ने पहली बार विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी।
1: सन 2008 में 31 मई को ही विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ 9.72 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सन 2007 में ही सैप ब्रेटर तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने।
0: सन 2010 में भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया था आज ही के दिन।
1: सन 1907 में आज के ही दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली टैक्सी सेवा शुरू की गई।
0: बातें जब आज की तारीख की अहमियत की हो रही है तो आपको बताते चलें कि दुनिया भर में तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष आज के दिन यानी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।
1: तंबाकू से होने वाले नुकसान को देखते हुए 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला लिया ताकि धूम्रपान के सेवन में कमी और स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके
0: और साथ ही साथ हम अपनी जिंदगी से प्यार भी कर सकें।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में बातें करें अगर मौसम के मिजाज की, तो आपने भी महसूस किया होगा कि आज की सुबह हल्की ठंडी हवाओं और बादलों की नरम चादर के साथ हुई।
1: आज भी आसमान में धूप और बादलों की आंख मिचौली दिन भर देखने को मिल सकती है,
0: और मौसम विभाग की माने तो दोपहर बाद कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है और आंधी की भी संभावनाएं बताई गई हैं।
1: बातें करें अगर आज की तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
0: आज हवाओं में नमी और बारिश की संभावना की वजह से मौसम सुहावना महसूस हो रहा है,
1: लेकिन अगर घर से बाहर जाना भी हो तो सावधानी जरूर बरतें। खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे तूफानी मौसम के दौरान रुकने से बचें।
0: मौसम कभी भी अपना मिजाज बदल सकता है, खासकर शाम के वक्त तेज हवा, गरज और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है।
1: सचमुच इन दिनों धूप और बारिश के साथ साथ पवन भी कुछ दीवानी सी है।

0: और आखिर में चलते चलते बस ये कहना चाहेंगे कि अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, हर सफर में हम सफर नहीं होते।
1: हम सफर ना सही, उनकी यादें और उनके दिखाए रास्ते हमें कई बार मंजिल का रास्ता बता ही देते हैं। तो आप भी हर पल आगे बढ़ते रहे मंजिल की ओर।
0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वक्त हो चला है जोहार राज्य के पन्नों को यहीं समेटने का। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें
1: और फिलहाल हमें दे इजाजत।
0: जोहार, जोहार।

ये आकाशवाणी का चाई बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत की जनता के साथ संवाद। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा।

0: लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अपने क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: बोल बोल के थक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किट बैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
6: RBI कहता है
7: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
12: नमस्कार सर। नमस्कार।
13: नमस्कार सर।
1: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
6: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
12: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, कभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
12: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर
1: देखिए आप दो

0: उन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ दो दिनों के भीतर आप दोनों ने तीन बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
1: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
1: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे

एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक,
इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे।
क्योंकि

0: जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवंत देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें

0: सुरक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है?
7: क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन।
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए तक, नो कोलैटरल।
7: वो कहाँ है?
6: मिठाई।
8: RBI कहता है
9: खतरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। सखियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और महजबीन, अब आगे कार्यक्रम में क्या है?
10: अब हम सुनवाएंगे एक बातचीत, मादक पदार्थ प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर पीहू, और इनसे बातचीत कर रही है हमारी रेडियो सखी खुशबू।
11: सखियों, आज के आधुनिक समय में मादक पदार्थों का सेवन समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा तथा अन्य नशीले पदार्थ न केवल व्यक्ति के मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ ये प्रजनन स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खतरा सा बनती जा रही है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातें कर रही हैं डॉक्टर पीहू। पीहू जी, आपका हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
12: धन्यवाद खुशबू जी। मैं डॉक्टर पीहू, अभी मैं सरकारी अस्पताल में कार्यरत हूँ।
11: जी पीहू जी, आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो आपको क्या लगता है कि मादक पदार्थों का सेवन प्रजनन स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है?
12: बहुत सही कहा खुशबू जी आपने। जैसा कि आपने पहले ही बोला है कि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालता है, तो आज इस सेगमेंट में हम इसे थोड़ा सा डिटेल और थोड़ा मेडिकल टच के साथ समझेंगे कि ये कैसे प्रभाव डालता है। तो जैसा आपका क्वेश्चन है कि ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरह अफेक्ट कर रहा है
11: जी,
12: तो हम पहले अगर मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, तो जो भी मादक पदार्थ है या नशीले पदार्थ है वो सीमेन की क्वालिटी खराब करते हैं। कैसे खराब करते हैं? इनसे स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी ये कम हो जाता है। तीसरी अगर हम बात करें तो इनके कारण एबनॉर्मल स्पर्म्स बनते हैं और साथ ही DNA डैमेज भी काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि इरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है मेल में, उसे भी प्रभावित करता है। तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो मादक पदार्थ और नशा करने से ये इम्पोटेंसी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। उसी तरह अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो फीमेल में भी सेम ये इनफर्टिलिटी करता है। कैसे करता है? सबसे पहले तो ये AMH के लेवल को कम करता है। AMH क्या है? एंटी मलेरियन हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये हमारे फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कि ये फेलोपियन ट्यूब में सीलिया डैमेज करता है। सीलिया क्या है? सीलिया फेलोपियन ट्यूब में होता है जो कि फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस की तरफ मूव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन क्या है? जो भी बच्चे

0: का डेवलप हो रहा है वो फाइनली जाकर यूट्रस में इम्प्लांट होता है, फिर वहां से उसे न्यूट्रिशन मिलती है और वो डेवलप होता है। तो इस प्रोसेस में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। अब हो सकता फेलोपियन ट्यूब अगर ना समझ पाए तो फेलोपियन ट्यूब एक नली होती है जो कि अंडाशय और बच्चेदानी को कनेक्ट करती है। तो इस तरह ये स्पर्म में भी सीलिया को डैमेज कर रहा है और फेलोपियन ट्यूब में भी सीलिया डैमेज कर रहा है। तभी आजकल हम मैरिड कपल्स में ऐसा देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी के रेट काफी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो इस तरह एडिक्शन हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, इन सब पे बुरा प्रभाव डालता है। और अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो इसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत आती है और बहुत बार तो हम देखते हैं कि कंसीव हो जाने के बाद भी एबॉर्शन के रिस्क या फिर एबनॉर्मल बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये डीएनए डैमेज बढ़ा देता है।
1: जी, नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर को नुकसान पहुंचता है, और यदि महिला गर्भवती हो तो उन्हें कौन कौन से खतरे हो सकते हैं?
0: देखिए, अगर महिला गर्भवती है और वो मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ इनका सेवन करती है या पहले से करती आ रही है, तो इनसे होने वाले खतरों को मैं दो सेगमेंट में डिस्कस करूंगी। एक तो माँ को क्या खतरा हो सकता है, दूसरा उसके अंदर पलने वाले बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले अगर हम माँ की बात करें तो माँ में ये प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, प्लेसेंटल जो माँ को बच्चे से कनेक्ट करता है, इसके वजह से प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग इश्यूज बढ़ जाते हैं। दूसरा तो मैंने बताया है पहले ही कि सीलिया डैमेज करेगा फेलोपियन ट्यूब में, तो इसके कारण एक तो पहले ही बताया जैसे एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, दूसरा प्रेगनेंसी में क्या करता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? जो प्रेगनेंसी आपका बच्चेदानी से बाहर डेवलप हो रहा है, मतलब बच्चा बच्चेदानी में इम्प्लांट ना होकर वो कहीं और इम्प्लांट हो गया, तो ये वाली दिक्कत भी हमें बहुत देखने को मिल रही है। अब अगर बच्चे की बात करें कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम होती है, तो जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण मिसकैरेज के चांसेस या प्री मेच्योर बर्थ के चांसेस, लो बर्थ वेट मतलब वजन कम होना या प्रॉपर ग्रोथ ना हो पाना, इन सब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है कि अगर बच्चा पैदा हो भी गया तो एक साल तक ऐसा रिस्क रहता है कि अचानक उसकी डेथ हो जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इस नाम से जानते हैं। प्लस लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन होते हैं बच्चों को, जैसे कि उनको लंग से रिलेटेड दिक्कत जिसकी वजह से सांस जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उनका ब्रेन भी डैमेज होता है जिससे लर्निंग डिफिकल्टीज और उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं।
1: जी पीहू जी, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई कि किस तरह से शरीर में मादक पदार्थों के सेवन से हानि पहुंचती है, तो ऐसे में मादक पदार्थों से होने वाली बीमारियों और मानसिक समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत सही सवाल पूछा आपने खुशबू जी, कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जैसा अफेक्ट कर रहा है जो हमने पहले बात किया है, इसके साथ साथ ये और भी बीमारियों और मानसिक समस्याओं को उत्पन्न करता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, मुझे लगता है कि समाज में अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि स्मोकिंग से तो लंग कैंसर ही होता है ना?
1: जी,
0: लेकिन ऐसा नहीं है। स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर नहीं होते हैं, स्मोकिंग से अधिकांश गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर्स होते हैं, मतलब पेट से रिलेटेड कैंसर्स, जैसे कि कोलोन के कैंसर, आपके लिवर के कैंसर, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, जो कि अभी बहुत ही तेजी से फैल रहा है।
1: जी
0: तो इन सब की जड़ें भी वहीं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं कि इनमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या इनके वजह से होने वाले जो डीएनए डैमेज होते हैं, इन सब के वजह से आज कैंसर हमारे समाज में गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। सिर्फ
1: जी हाँ
0: कैंसर ही नहीं, ये हार्ट को भी अफेक्ट करता है। आजकल आए दिन हमें न्यूज में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि एक यंग इंसान है और उसमें हार्ट अटैक हो गया। तो ये सब इन्हीं से लिंक है। इसके अलावा आजकल ज्यादातर लोगों में पेट से संबंधित समस्याएं, जैसे लीवर से संबंधित समस्याएं होती हैं, उसका भी रीजन यही है कि प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो गया है, क्योंकि इसका इफेक्ट एंजाइम्स पे भी पड़ता है। इसके वजह से मोटापा बढ़ता है और मोटापा बढ़ने के बाद तो फिर तमाम सारी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है।
1: जी
0: और इतना ही नहीं, ये हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी खराब करता है। इसके अलावा ये लोगों में एजिंग प्रोसेस मतलब बुढ़ापा जल्दी करवाता है,
1: जी
0: क्योंकि इससे क्या होता है, कोलेजन डैमेज होते हैं हमारे। ये तो हमने बात किया है शारीरिक समस्या, बट ये एक हमने बात किया प्रजनन समस्या, शारीरिक समस्या। अब इसके अलावा ये मानसिक समस्या भी बहुत सारी उत्पन्न करते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्ट्रेस मतलब टेंशन बहुत होते हैं लोगों को, डिप्रेशन, एंजाइटी, आजकल बहुत सारी तमाम तरह के साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हमें लोगों में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब का नतीजा ये होता है कि सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। अब हमारे श्रोताओं को लगेगा कि इससे तो टेंशन दूर होती है तभी लोग नशा करते हैं, ये एक साइकिल चलता है, एक जिसे हम विशेष साइकिल बोल सकते हैं कि टेंशन होता है तो नशा करते हैं और फिर नशा करते हैं तो टेंशन और बढ़ता है।
1: जी, इतने सारे नुकसान हैं नशीले पदार्थों के सेवन के, फिर
0: जी
1: भी
0: बिल्कुल।
1: युवाओं में नशे की बढ़ती आदत का मुख्य कारण आपको क्या लगता है?
0: देखिए कारण तो बहुत ही सारे हैं और अगर हम गिनने चले तो लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाएगी, पर अगर मैं मुख्य कारण की बात करूं तो सबसे पहला जो शुरुआत होता है, जैसा मुझे लगता है कि ये फ्रेंड सर्कल से स्टार्ट होता है, या फिर अगर परिवार में ऐसा माहौल है या आपके वर्क प्लेस पे ऐसा माहौल है तो उससे भी इसकी शुरुआत होती है। और जो लोग हाई फाई पार्टीज अटेंड करते हैं उनमें ये सब इजीली एक्सेसिबल होता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि युवा एक या दो बार तो मस्ती मस्ती में, हंसी मजाक में ये ट्राई करते हैं और आगे चलकर उन्हें उनकी लत लग जाती है, क्योंकि ये तो एडिक्टिव होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, जो कि आजकल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं या फिर जॉब्स है या रिलेशनशिप्स है, तो इनसे जो भी स्ट्रेस क्रिएट होता है, इससे थोड़े टाइम के राहत के लिए भी लोग इसका सहारा लेते हैं जिससे कि उनको अच्छा फील होता है। इसे हम यूफोरिया बोलते हैं, पर ये बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है और इसका नतीजा ये निकल कर आता है कि एडिक्शन होता है उनको, जबकि हम बात कर रहे हैं। और इतने सारे रीजन के अलावा, या फिर आजकल युवाओं में ऐसा बहुत प्रचलन बढ़ गया है स्टेटस सिंबल या फिर
1: जी,
0: कूल बनना है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
1: पीहू जी, नशे करने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन
0: हाँ
1: इसे
0: जी।
1: रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं या क्या प्रयास कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, इसमें अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो है वो है परिवार और स्कूल का।
1: जी
0: बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है हम उसे एडिक्शन से होने वाले शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, हेल्थ इश्यूज, ये अच्छे से बताएं और बार बार दोहराएं। इसके अलावा घर में भी ऐसा माहौल बिल्कुल ना रखें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं फाइनली वही सीखते हैं। और उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है इस पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं, इनका बिहेव थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, जिसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे डरने के बजाय बेझिझक शेयर कर सके, जिससे उन्हें सही गाइडेंस मिलेगी। प्लस स्ट्रेस से कैसे डील करना है हमें उन्हें ये सिखाना पड़ेगा, जिससे कि वो एडिक्शन की तरफ ना जाए। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो जो मोरल एजुकेशन है, मतलब संस्कार, प्लस स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसे बचाने के लिए। तो इसमें मैं तीन पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगी। सबसे पहला नॉलेज अबाउट द साइड इफेक्ट, दूसरा लर्न टू डील विद द स्ट्रेस एंड टेंशन, थर्ड शेयरिंग द प्रॉब्लम्स।
1: जी, अंततः यह कहा जा सकता है कि मादक पदार्थ प्रजनन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। स्वस्थ शरीर और सुखी जीवन के लिए नशे से दूर रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। हमें स्वयं भी जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना चाहिए। पीहू जी, आप हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आई, अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद खुशबू जी, आपको भी और आपकी आकाशवाणी टीम को भी कि मुझे आपने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत मादक पदार्थ प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हमारी आज की मेहमान थी डॉक्टर पीहू और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी खुशबू। खुशबू, आगे हम अपनी बहनों को महिला सुरक्षा के बारे में कुछ जानकारी देंगे।
3: बिल्कुल, क्योंकि महिला सुरक्षा समाज के विकास और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना समाज के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। सभी महिलाओं को साथ ही साथ अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी भी होनी चाहिए,
2: और डिजिटल और हेल्पलाइन नंबर के सहायता से भी आपातकालीन स्थिति में हमारी जो हम महिलाएं हैं 109 पर हम कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आप जरूर नोट कर ले, 1091। और सभी सखियों से यही कहना है कि आप बेझिझक अपनी सहायता इनसे प्राप्त कर सकती हैं।
3: और ये हेल्पलाइन नंबर 1091 हमेशा 2400 घंटे खुली रहती हैं। आप किसी भी आपात स्थिति में इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती हैं और सहायता प्राप्त कर सकती हैं। सखियों, आपसे बातें करने का तो बहुत मन है, लेकिन अब घड़ी की सुई हमें इजाजत नहीं दे रही है, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की, और अब अपनी दो सखियों खुशबू
2: और महजबीन को दे इजाजत। नमस्कार।
4: गृहलक्ष्मी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं मीरा मिश्रा और साथी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12:45 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खड़िया लोकगीत। कलाकार हैं रेजीना लकड़ा और साथी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi says that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that three rare copper plates have been found there related to Maharishi Balarjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
1: Gyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi ek mahatvapurna khoj hui hai. Yahan teen durlabh ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है तेज धूप गर्म हवाएं ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है पानी पीते रहिए धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं
2: In his Mann Ki Baat program, the Prime Minister talked about the recently held National Senior Athletics Federation competition in Ranchi, Jharkhand, where nearly 800 athletes participated. He congratulated Gurinder Veer Singh, Vishal TK, Tejaswin Shankar, Dev Meena, and Kuldeep Kumar for breaking four national records in different events. In his address, Prime Minister Modi also appreciated the efforts of Saji Valasheril of Aluva in Keralam, who runs a swimming club with no fees in which more than 15,000 people have learned

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र, गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर दी बधाई। सीयूईटी यूजी तकनीकी दिक्कत पर एनटीए ने जताया खेद, 3,765 अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की तैयारी, एनटीए जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। रांची के जलाशयों और नदियों से अतिक्रमण हटाने का दिया गया निर्देश, हरमू नदी, कांके और धुरवा डैम पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कल से महंगी होगी बस यात्रा, रांची हजारीबाग समेत कई रूटों पर 30% तक बढ़ा किराया, यात्रियों के साथ माल ढुलाई पर भी पड़ेगा असर। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम होगा आईपीएल का फाइनल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस में होगी खिताबी जंग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश भर के करीब 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों गुरविंदर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 100 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत भी की। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए।
2: संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और

0: 4x100 meter का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मौजूदा गर्मी के मौसम में विशेष सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए और तेज धूप में बाहर निकलते समय सतर्क रहना चाहिए।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
3: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों से माफी मांगी है। NTA के अनुसार 30 मई को आयोजित परीक्षा की पहली पाली में कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी। एजेंसी ने बताया है कि इस समस्या से प्रभावित कुल 3,765 अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। पुनर्परीक्षा की तिथि और प्रभावित उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। रांची जिले में जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख जलाशयों और नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरमू नदी के जलग्रहण क्षेत्र, कांके डैम, थुरवा डैम और अन्य प्रमुख जलाशयों के आसपास से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण की सूची तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया डीएनडी न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा आज राज्य भर के 94 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 45,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। राजधानी रांची में सबसे अधिक 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आयोजित यह परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 12 बजे तक चली। कोडरमा जिले में 1 जून से बस यात्रा महंगी हो जाएगी। जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन ने डीजल, टायर, मोटर पार्ट्स और टोल टैक्स की बढ़ती लागत को देखते हुए बस किराए में 15-30% तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। झुमरी तलैया में आयोजित एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि बढ़ी हुई दरें 1 जून से लागू होंगी। इससे झुमरी तलैया से रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, चतरा, नवादा और रजौली सहित विभिन्न मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक किराया देना होगा। सिमडेगा जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जलडेगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र के गांगू टोली स्थित शनिमनि ढाबा में छापेमारी कर पुलिस ने विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब बरामद की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मदेव पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
4: जलडेगा थाना क्षेत्र में अवैध शराब

0: थी। सूचना पत्र थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया था जिसमें लगभग 8 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और बियर की भी बरामद की गई है, साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। बोकारो जिले के बीएसएल की एलएच कॉलोनी में एक घर में भीषण आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मिली जानकारी के अनुसार घर में रखा मिट्टी तेल का एक ड्रम आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद आग तेजी से फैलकर पूरे घर में फैल गई। भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के थाईलैंड दौरे के लिए झारखंड के युवा खिलाड़ी आदर्श राज को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने विश्वास जताया कि आदर्श राज के नेतृत्व में भारतीय टीम थाईलैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करेगी और देश का नाम रोशन करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले यह खिताबी मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र, गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर दी बधाई। सीयूईटी यूजी तकनीकी दिक्कत पर एनटीए ने जताया खेद, 3,765 अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की तैयारी, एनटीए जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। रांची के जलाशयों और नदियों से अतिक्रमण हटाने का दिया गया निर्देश, हरमू नदी कांके और धुरवा डैम पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कल से महंगी होगी बस यात्रा, रांची हजारीबाग समेत कई रूटों पर 30% तक बढ़ा किराया, यात्रियों के साथ माल ढुलाई पर भी पड़ेगा असर। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम होगा आईपीएल का फाइनल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस में होगी खिताबी जंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कजरी। कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी।

0: उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:45 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की गाई चंद गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं फयाज हाशमी की लिखी गजल। मौसिकार हैं निसार बज़मी, फनकार हैं आशा भोसले। तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोकें तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, आज जाने की जिद ना करो।
1: आज

ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरा सफ़र, हम लोग तो उकता गए अपनी सुना आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। आइए सुनते हैं मौसी नकवी की लिखी गज़ल। मौसीकार हैं गुलाम अली और फ़नकार हैं आशा भूत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को है, आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर, पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत उदित नारायण की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

0: नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इनसे लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दी,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। और जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं रोजा फिल्म से हरिहरन और KS चित्रा को। गीत के बोल लिखे हैं PS मिश्रा ने, क्षमा कीजिएगा PK मिश्रा ने, और धुन बनाई है AR रहमान ने।

अनकही, यह फिल्म का नाम। और आइए सुनते हैं इस फिल्म से श्रेया घोषाल को। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

सागर, आइए सुनते हैं इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:55 होने को है और ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की भी चर्चा की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। अभियान के शुभारम्भ से पहले श्री चौहान ने झारखण्ड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के बात की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। दुमका स्थित सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसके तहत 20 जून तक विश्वविद्यालय और उसके अधीन संचालित सभी स्नातकोत्तर विभागों तथा महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक और पठन पाठन संबंधी गतिविधियां स्थगित रहेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिए या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक R. दुरईस्वामी ने यह बात कही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रामगढ़ जिले के उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर बीती रात रामगढ़ उपकारा का औचक निरीक्षण किया गया। हालांकि इस दौरान उपकारा परिसर से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP अमित रविदास ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
3: ग्राम पिंडारी से 2 व्यक्तियों को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए पकड़ा गया। साथ ही साथ ग्राम बरमुंडी में छापेमारी के क्रम में एक और व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई। तीनों व्यक्तियों के पास से कुल 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड भी प्राप्त हुए हैं।

हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंडर 18 एशिया कप के पूल ए के अपने दूसरे मैच में आज कोरिया को 3-1 से पराजित कर दिया। भारत की तरफ से नौशीन नाज, श्रुति कुमारी और किरण एक्का ने गोल किए। मलेशिया और कोरिया के खिलाफ जीत के बाद भारत अब पूल ए तालिका में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। वह 2 जून को पूल ए के अपने अंतिम मैच में सिंगापुर के खिलाफ जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सौदागर फिल्म से लता मंगेशकर को। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 होने को है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुन सकेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:21 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रोग्राम रांची मेलोडीज़।

आकाशवाणी रांची पर वक्त हो चला है उस खूबसूरत सफर का जिसे हम कहते हैं रांची मेलोडीज। और आज की मेलोडीज में सुरों एहसासों के साथ आपके साथ है आपकी दोस्त शिल्पी।

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि भावनाओं को पर्दे पर जीवंत कर दिया। एक ऐसे ही विलक्षण निर्देशक थे राज खोसला, जिन्होंने आज ही के दिन सन 1925 में जन्म लिया था। राज खोसला की फिल्मों में भावनाओं की गहराई साफ दिखाई देती है। वर्ष 1964 में आई फिल्म वो कौन थी ने रहस्य और संगीत का ऐसा संगम प्रस्तुत किया कि आज भी उसकी चर्चा होती है, और इस फिल्म के जिक्र के साथ ही होठों पर आता है वो गीत जिसे सुनकर प्रेम का हर रंग जीवंत हो उठता है।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रांची मेलोडीज, और आज की रांची मेलोडीज में पर्दे के पीछे के उस जादूगर की कहानी जिन्हें हम राज खोसला के नाम से जानते हैं। राज खोसला की फिल्मों में रहस्य था, रोमांस था, दर्द था, संगीत था, और उनसे भी बढ़कर इंसानी रिश्तों की गहरी समझ थी। उनकी फिल्मों के गीत आज भी सुनने वाले के दिलों में उसी तरह बसे हुए हैं जैसे दशकों पहले थे। 1966 में आई उनकी फिल्म मेरा साया ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। फिल्म की कहानी जितनी सशक्त थी वैसा ही उसका संगीत था अद्भुत। आज भी सुनकर उतना ही कर्णप्रिय लगता है इस फिल्म का गीत।

राज खोसला जानते थे कि कैमरा भावनाओं को कैसे पढ़ता है। उनकी फिल्मों में नायिका सिर्फ एक किरदार नहीं होती थी, बल्कि कहानी की आत्मा होती थी।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में आज हम सुन रहे हैं निर्देशक राज खोसला की फिल्मों के मेलोडियस गाने। राज खोसला की फिल्मों में संगीतकार और गीतकारों को अपनी कला दिखाने का भरपूर मौका मिलता था। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्मों के गीत समय की कसौटी पर खरे उतरे। उनकी एक बेहद ही शानदार फिल्म आई मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसने रिश्तों की जटिलताओं को बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया, और इस फिल्म का शीर्षक गीत तो अपने आप में एक भावनात्मक दस्तावेज है।

राज खोसला ने सामाजिक विषयों को भी बड़े सलीके से पर्दे पर उतारा। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ जीवन के मूल्य भी दिखाई देते थे। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था उनकी फिल्मों में, बल्कि कहानी का सबसे खूबसूरत किरदार होता था। बादलों की तरह उमड़ते जज्बात और आंखों में छिपे अनकहे एहसास, ऐसा ही एक यादगार नगमा।

राज खोसला सिर्फ एक निर्देशक नहीं थे, बल्कि वे तो भावनाओं के चित्रकार थे। उन्होंने रहस्य को रोमांस से, संगीत को कहानी से और संवेदनाओं को सिनेमा से इस तरह जोड़ा कि उनकी फिल्में

आज भी नई पीढ़ी को आकर्षित करती है। उनकी फिल्म सीआईडी ने हिंदी सिनेमा में थ्रिलर फिल्मों की नई पहचान बनाई और साथ ही इस फिल्म ने दिए कुछ सदाबहार गीत, और उस दौर के गीत आज भी इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उसमें सादगी थी, सच्चाई थी और दिल से निकले हुए जज्बात थे।

राज खोसला ने करीब 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा को ऐसे गीत दिए जिनके गीत आज भी रेडियो, मंच और दिलों में गूंजते हैं, क्योंकि दर्द और प्यार जब सुरों में ढलता है तो वो हर दिल की कहानी बन जाता है। राज खोसला की फिल्मों के गीतों का जिक्र हो रहा हो और उस गीत को भूल जाएं हम कैसे भला, जो आज भी बेहद ही कर्णप्रिय लगता है। जब सुरों में भीगी हो तन्हाई और आंखों में उमड़ आए यादों के बादल, तब दिल से निकलता है नैनों में बदरा छाए।

आज की रांची मेलोडीज में बस इतना ही। अगली बार कुछ और खूबसूरत गीतों और किस्सों के साथ होंगे आपसे मुखातिब। तब तक के लिए अपनी दोस्त शिल्पी को दीजिए इजाजत।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रांची मेलोडीज। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। दुमका स्थित सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसके तहत 20 जून तक विश्वविद्यालयों और इसके अधीन संचालित सभी स्नातकोत्तर विभागों तथा महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक और पठन पाठन संबंधी गतिविधियां स्थगित रहेंगी। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिए या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंडर 18 एशिया कप के पूल ए के अपने दूसरे मैच में आज कोरिया को 3-1 से पराजित कर दिया। मलेशिया और कोरिया के खिलाफ जीत के बाद भारत अब पूल ए तालिका में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:02 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं बाल श्रोताओं का कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: बच्चों, जल है धरती की मुस्कान, जल से खिलता खेत खलिहान, नदियां झरने ताल तलैया, जल से सजती दुनिया की जीवन की नैया।
1: हाँ बच्चों, बूंद बूंद की कीमत जानो, पानी को तुम व्यर्थ न मानो। आज अगर जल बचाओगे तभी सुंदर भविष्य पाओगे, क्योंकि जल है तो कल है।
0: हाँ बच्चों, जल यानी पानी हमारे जीवन की सबसे अनमोल चीज है। इसके बिना कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, खेत खलिहान जीवित नहीं रह सकता। आप देख रहे हैं ना, अभी गर्मी में कितनी प्यास लगती है, इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। बच्चों, आप भी महसूस करते होंगे कि हमेशा मन करता है कि ठंडा पानी हम पिए, चाहे खेल कर आते हों या पढ़ाई करते हों, इसलिए अपने साथ पानी जरूर रखें।
0: हाँ बच्चों, और देखा जाए तो बिना जल के जीवन संभव नहीं है। हम हर रोज पानी का उपयोग करते हैं, चाहे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, या घर की साफ सफाई या बागवानी के लिए। पानी का उपयोग सभी जगह है।
1: बच्चों, हमारे किसान जब खेतों में फसल या सब्जियां लगाते हैं तो उन्हें हमेशा पानी की आवश्यकता होती है। वो अपनी क्यारियों में बर्बाद जल को भी उपयोग में लाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत उसमें लगी होती है।
0: हाँ बच्चों, भैया ने बिल्कुल सही बात समझाया। आप गौर करेंगे तब देखेंगे पानी से धरती हरी भरी और सुंदर दिखाई देती है। पानी की कमी से बाग बगीचे भी मुरझा जाते हैं। इसलिए आप सब पानी की बर्बादी बिल्कुल मत कीजिएगा बच्चों। कहीं भी नल को खुला मत छोड़िएगा। आप चाहे तो पानी की बर्बादी को बचा सकते हैं बच्चों। तो शुरुआत कीजिए अपने घर से और आज से। जैसे ब्रश करते वक्त नल को बंद रखिए, अपनी साइकिल या आप स्कूटी को धोते हैं तो बाल्टी में एक मग डालकर धोएं, यानी कि टैप वाटर का इस्तेमाल ना करें, इससे कई लीटर पानी यूं ही बह जाता है।
1: और दूसरों को भी जल बचाने के लिए प्रेरित करें बच्चों। घरेलू उपयोग में इस्तेमाल किया हुआ जल को अपने गमले में डाल सकते हैं। वाटर फिल्टर से व्यर्थ निकले हुए जल को एक जगह जमा करके उसे भी पेड़ पौधे में डाल दें। देखिएगा, जल मिलते ही वो भी लहलहा उठेंगे।
0: घर के किसी भी नल से पानी टपक रहा हो तो अपने माता पिता को उसकी जानकारी दें। वर्षा जब भी हो तो उसे कैसे संचय करना है,

0: इसके बारे में भी आप जानें।
1: यही तो जागरूक बच्चे की पहचान है बच्चों, है ना? तो आप लोग भी जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए।
0: बच्चों गर्मी बहुत पड़ रही है, तेज धूप, पसीना और थकान, तो इससे बचने के लिए आपको अपने शरीर को खास ध्यान रखना होगा।
1: तो बच्चों आप लोगों ने दीदी का इशारा समझ लिया होगा, है ना, कि सुबह सुबह हमें उठ जाना चाहिए और योग और व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, है ना?
0: हाँ बच्चों, क्योंकि मुझे पता है आप सब थोड़ा आलस से घिर गए हैं, स्कूल भी बंद है, तो क्यों ना छुट्टियों का आनंद लीजिए। देखिएगा सारा आलस कैसे छूमंतर हो जाएगा। बस सुबह उठिए और हल्का व्यायाम और योग का अभ्यास कीजिए।
1: हाँ बच्चों, प्राणायाम करने से शरीर को ताजगी मिलती है, सूर्य नमस्कार करना सीख लें तो शरीर मजबूत और लचीला भी बनता है।
0: और बच्चों जब आप खेलेंगे तो उससे शरीर भी सक्रिय रहेगा, साथ ही खेलने से आपके नए दोस्त भी लेंगे, यानी कि हर दिन एक नए दोस्त आपसे जुड़ते चले जाएंगे।
1: बच्चों एक बात और, अगर आप योग या प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो इसकी शुरुआत आसान तरीके से सीखें या करें, जैसे ताड़ासन शरीर को सीधा और मजबूत बनाता है, प्राणायाम मन को शांत और ऊर्जावान रखता है, इसलिए योग प्राणायाम अवश्य करें।
0: लेकिन बच्चों कुछ सावधानियां भी बरतें। अभी गर्मी का मौसम है इसलिए खूब पानी पिएं, तरबूज, खीरा, नारियल पानी जैसे फल को खाएं। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात है कि फास्ट फूड, जंक फूड से बचें, ज्यादा ठंडी चीजें भी आप न खाएं।
1: अभी गर्मी का मौसम है बच्चों, और धूप में निकलते वक्त छाता, टोपी और पानी की बोतल अपने साथ रखें। शाम को ही आप बाहर खेलने जाएं, दोपहर में धूप में न निकलें। और हाँ, मोबाइल भी कम चलाएं, परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। गर्मी की छुट्टी यादगार बन जाएगी। मनपसंद कार्य कीजिए, संगीत सुनिए, पेंटिंग बनाइए और नया आर्ट सीखने की कोशिश कीजिए। साथ ही आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, है ना? तो दीदी बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले हम बच्चों का थोड़ा मनोरंजन भी करवा दें तो कैसा रहेगा? तो चलिए बच्चों को सुनाते हैं ये बाल गीत।

0: मेरा बिंदास बोल रे,
1: बोल बोल बोल बोल बोल रे।
0: मैं भी हूँ, तू भी है,
1: तू भी है।
0: ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चीक बम।

0: भैया हमने बच्चों को बाल गीत सुनवा दिया और अब बारी है कि हम बच्चों के मुख से कुछ सुनेंगे।
1: तो चलिए बच्चे भी तैयार हैं, उनसे सुन लेते हैं।
2: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम मानवी कुमारी है।
2: मानवी, आज अपने दोस्तों को आप क्या सुनाएंगी?
3: आज मैं अपने दोस्तों को बारिश पर एक कविता सुनाऊंगी। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घंघोर गरजती बारिश के संग आंधी। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबड़ू दौड़ा भीतर। राज मिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और होड़ी पर आंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चोड़म चोड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे जा लेटी बिजली के डर के मारे। धन्यवाद।
2: वाह, बहुत अच्छी कविता। आपका नाम क्या है और आप अपने दोस्तों को क्या सुनाएंगे?
4: मेरा नाम अमन कुमार गुप्ता है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको सवाली राम कविता सुनाने जा रहा हूँ। बबलू बस करते सवाल है, क्या उत्तर दे बुरा हाल है। बबलू 3 बरस के बच्चे, मगर अकेल के तनिक न कच्चे। नई चीज कोई दिख जाती, पूछे कैसे काम है। आती मिट्टी में सोंदापन क्यों है, मिर्चों में तीखापन क्यों है। मेघा जल बरसाते कैसे, इंद्रधनुष दिख जाते।
2: वाह, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। आप क्या सुनाएंगी, पहले तो आप अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम अन्विशा श्रीवास्तव है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। आलू

0: धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम आकांक्षा है।
1: आप क्या सुनाएंगी?
2: मैं अपने दोस्तों को एक कविता सुनाना चाहूंगी। सूरज निकला, धूप खिल गई, माँ मुझको भूख लग गई, ची ची ची ची ची ची कहाँ उड़ गई मम्मी जी। छोटी नन्ही चिड़िया हूँ, माँ तेरी मैं गुड़िया हूँ, जल्दी से अब आ जाओ, खाना मुझे खिला जाओ, चुपके से मैं सो जाऊंगी, ची ची नहीं मचाऊंगी।
1: वाह, चीची नहीं मचाऊंगी, चुपके से सो जाऊंगी। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम शाश्वत चौधरी है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है याद तुम्हारी आती है। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। जब चम चम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोक कर लाती है, है जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शांत से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है, जब ओस के रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। झरने जब झर झर झरते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती है, जब देश देश की बातें वे सागर में जाकर कहती है, जब उतार चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। धन्यवाद।
4: मेरा नाम श्रेयांश कुमार है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ, उसका नाम है तिरंगा। लहर लहर तिरंगा लहरा, शान आनमान हमारी भरा, रंग कैसी बलिदान का बुलंद नारा, ये देश प्रेम का दुश्मनों को सबक सिखाना, तुम ना कभी पीठ दिखाना, रंग सफेद है शांति का, प्रेम भाईचारे सद्भाव का, घृणा हिंसा द्वेष से बचना, विश्व शांति का दूत तुम बनना, रंग हरा भरी धरा का प्रतीक, प्रदूषण रहत धरती का, पर्यावरण को तुम सवारना, मित्रता से उससे प्रण निभाना।
1: क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम खुशी है।
1: खुशी, आप किस कक्षा में पढ़ती हैं?
5: मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
1: खुशी, आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाएंगी?
5: मैं आज अपने दोस्तों को एक कविता सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान और उसके कवि हैं राम वृक्ष कुमार। कोटि कोटि कंठों से निकली एक यही स्वर धारा है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा सुसंविधान हमारा है। शत शत नवल प्रणाम तुम्हें, एक तुम ही सहारा है, बहते दरिया में नावों का सुंदर एक किनारा है, समता का अधिकार दिया ये शिक्षा का उजियारा है, नारी को सम्मान दिलाकर उज्जवल भविष्य संवारा है, ना कोई राजा कोई प्रजा, लोकतंत्र अति प्यारा है, दुनिया में गुणगान तुम्हारा नीति बड़ा ही न्यारा है, जीव जंतु पशु पक्षी का भी जीवन तेरे द्वारा है, हर पन्नों के धाराओं से मिट गया अंधियारा है, देश का गौरव गरिमा है तू, काशी चर्च गुरुद्वारा है, संविधान का पन्ना पन्ना तेरा और हमारा है, भीमराव की चली लेखनी दूर हुआ अंधियारा है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा सुसंविधान हमारा है।
1: वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
6: बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दीदी, तो अब जानकारी की बातें भी होनी चाहिए।
7: बिल्कुल भैया, और बच्चों को आज हम बताएंगे कि एक पेड़ के कितने फायदे हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं? पेड़ ही तो हैं जो हम सबको शुद्ध हवा, भोजन, दवा, फल, कागज के साथ साथ स्वस्थ जीवन भी देते हैं।
6: हाँ बच्चों, पेड़ हमें प्राणवायु देता है। जब बहुत गर्मी पड़ती है और आप छायादार वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो देखिएगा, गर्मी और धूप का एहसास कम हो जाता है।
7: बिल्कुल, और बच्चों इतना ही नहीं, ये बारिश को भी बुलाते हैं, और जब बारिश ज्यादा होने लगे तो मिट्टी को बहने से भी बचाते हैं, साथ ही पर्यावरण की शोभा को भी बढ़ाते हैं। पेड़ पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर इसके बदले ऑक्सीजन

0: ऑक्सीजन भी देते हैं।
1: हाँ बच्चों, अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना तो देखिएगा, पेड़ पौधों का हर अंग प्रकृति को संतुलित करने में अपना योगदान देता है। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, शाखाएं वातावरण में मौजूद अनावश्यक शोर यानी ध्वनि प्रदूषण को भी रोकता है।
0: तो देखा ना बच्चों, एक पेड़ और फायदे अनेक हैं इसके। और भैया, हमारे बढ़ते बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी बात है, बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, इसलिए अच्छे काम करने चाहिए। अभी हमने बताया कि योग, प्राणायाम कीजिए, जल को बर्बाद होने से बचाइए, गर्मी की छुट्टी का सदुपयोग कीजिए, यानी अपने आसपास कोई भी आप पौधा लगा सकते हैं। और हाँ बच्चों, पौधा लगाकर उसे छोड़ ना दें, बल्कि उसकी देख रेख भी कीजिए।
1: बच्चों, इस उम्र में पढ़ाई, खेलकूद और अच्छे संस्कारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगति का असर जीवन भर साथ रहता है। इसलिए दोस्त बनाते समय थोड़ा ध्यान रखें। कभी कभी ऐसे बच्चों से भी आपकी दोस्ती हो जाती है जिन्हें गलत चीजों की लत हो।
0: हाँ बच्चों, समय रहते ही आप उनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी दोस्तों के साथ भी ना बोलने का सीखें।
1: बच्चों, आप हमेशा याद रखें, आप अपने माता पिता के लिए खास हैं, इसलिए नशा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। इससे स्वास्थ्य और भविष्य दोनों प्रभावित होता है। अच्छी आदतें जीवन बनाती हैं और बुरी आदतें जीवन बिगाड़ देती हैं।
0: तो भैया, हमने बच्चों के साथ इतनी सारी बातें कर ली और अब समय है कि हम अपने बच्चों को एक बाल कथा सुनाएं।
1: तो चलिए बच्चों, आज हम आपको सुनाते हैं सेक चिल्ली की कहानी, सेक चिल्ली की खीर। बच्चों, सेक चिल्ली पूरा बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफी भरी बातें करता था। सेक चिल्ली की माँ उसकी बेवकूफी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार सेक चिल्ली ने अपनी माँ से पूछा, माँ लोग मरते कैसे हैं? अब माँ सोचने लगी कि इस बेवकूफ को कैसे समझाया जाए कि लोग कैसे मरते हैं। माँ ने कहा, बस आंखें बंद हो जाती है और लोग मर जाते हैं। सेक चिल्ली ने सोचा कि उसे एक बार मरकर देखना चाहिए। उसने गाँव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया।
0: रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा कि हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। शेक चिल्ली यह बात सुन रहा था। वह अचानक बोल पड़ा, भैया मैं तो मर चुका हूँ, अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि यह बिल्कुल बेवकूफ आदमी है।
1: एक चोर शेक चिल्ली से बोला, भाई जरा गड्ढे से बाहर निकलकर हमारी मदद तो कर दो, थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना, मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है। शेक चिल्ली को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद ही कर दी जाए। तीनों ने मिलकर यह तय किया कि शेक चिल्ली अंदर चोरी करने जाएगा, एक चोर घर के आगे खड़ा रहेगा, ध्यान रखेगा, और दूसरा चोर घर के पीछे से ध्यान रखेगा।
0: शेख चिल्ली को तो बहुत अधिक भूख लगी थी, इसलिए वो चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। रसोई में शेख चिल्ली को दूध, चीनी और चावल रखे मिल गए। अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए, शेख चिल्ली ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगने शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने अपने हाथ फैला दिए।
1: शेख चिल्ली ने सोचा कि ये बुढ़िया खीर मांग रही है। शेख चिल्ली बोला, अरे बुढ़िया मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, सारा अकेले थोड़ी ना खा जाऊंगा। अरे शांति रख, तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेक लगती रही वो और ज्यादा फैल कर सोने लगी। उसने हाथ और भी ज्यादा फैला दिए। शेख चिल्ली को लगा कि यह बुढ़िया खीर के लिए हाथ फैला रही है। उसने झुंझलाकर गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। चीखती चिल्लाती बुढ़िया एकदम हड़बड़ा कर उठ गई और शेख चिल्ली पकड़ा गया। शेख चिल्ली बोला, अरे अरे मुझे पकड़कर क्या करोगे, असली चोर तो बाहर है, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह शेख चिल्ली ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी कहानी थी ना? तो कहानी तो बच्चों ने सुन ली दीदी, और अब हम क्या बच्चों को बताने वाले हैं?
0: भैया आज हम अपने बच्चों को बताएंगे एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में, और वो है गुरविंदर वीर सिंह।

0: जो एथलीट हैं।
1: बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने गरीबी, कठिनाइयों और संसाधनों की कमी के बावजूद अपने सपनों को टूटने नहीं दिया।
0: यह कहानी है पंजाब के तेज धावक गुरविंदर सिंह की, जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले से पूरे देश का नाम रोशन किया।
1: एक साधारण परिवार में जन्मे गुरविंदर सिंह बचपन से ही दौड़ने के शौकीन थे। जब दूसरे बच्चे खेलते खेलते थक जाते थे तब गुरविंदर और तेज दौड़ने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे उनका ये शौक उनका सपना बन गया।
0: लेकिन बच्चों, सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करना कठिन। गुरविंदर वीर के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला था। कई बार उनके पास अच्छे जूते पहनने तक के पैसे नहीं होते थे। कभी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती तो उनके कोच के दोस्त मदद करते। कभी प्रतियोगिता में जाने के पैसे नहीं होते तो समाज के लोग मदद के लिए आगे आ जाते।
1: लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद गुरविंदर वीर ने हार नहीं मानी। साल 2021 में उन्होंने पटियाला में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ केवल 10.27 सेकंड में पूरी करके गोल्ड मेडल जीत लिया।
0: वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने से बस थोड़े से अंतर से चूक गए, लेकिन उनका हौसला और मजबूत हो गया। फिर भुवनेश्वर में हुए फेडरेशन कप में उन्होंने 10.35 सेकंड का समय निकालकर फिर से गोल्ड मेडल जीता।
1: दो दिन में लगातार तीन रेस दौड़ने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चों, रिकवरी के लिए उन्होंने सिर्फ इडली खाई और फिर पोडियम पर पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। बच्चों सोचिए, जिस खिलाड़ी के पास हाईटेक जिम नहीं, फिजियो नहीं, महंगे ट्रेनर नहीं, फिर भी वो गोल्ड मेडल जीत रहा है, उसकी मेहनत कितनी बड़ी होगी। गुरविंदर कहते हैं कि उनके माता पिता कभी उस पर दबाव नहीं डालते। वे हमेशा कहते हैं, हम थोड़ा कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, लेकिन तुम अपने सपनों को पूरा करो। और यही परिवार का विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है।
0: दो साल तक चोट और फिटनेस की समस्या के कारण वे खेल नहीं पाए, लेकिन उनके परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, अभी हमारा समय नहीं आया, लेकिन एक दिन जरूर आएगा।
1: बच्चों, गुरविंदर वीर सिंह हमें सिखाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सफलता केवल सुविधाओं से नहीं मिलती। बच्चों, सफलता मिलती है मेहनत से, अनुशासन से, धैर्य और आत्मविश्वास से। अगर आपके पास बड़ा सपना है तो छोटी परेशानियों से नहीं डरना चाहिए।
0: तो बच्चों, आज से हम यह भी संकल्प लें कि हम कठिनाइयों से घबराएंगे नहीं, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि संघर्ष के रेस जीतने वाले ही एक दिन जीवन के असली विजेता बनते हैं। तो बच्चों, प्रेरक व्यक्तित्व गुरविंदर वीर सिंह, जिनकी कहानी हमें मेहनत, संघर्ष और सपनों पर विश्वास करना सिखाती है।
1: तो बच्चों, ये जानकारी थी गुरविंदर वीर सिंह की। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है बच्चों, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ जानकारियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
2: जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा, प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 4:34 हुए हैं। आइए आपको शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा बताते चलें। तो आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। पांच बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक और 6:00 आप पुनः सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 से आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम, लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी पूजा और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का शुरुआत हम करते हैं फिल्म दिल का रिश्ता के इस प्यारे से गीत के साथ, आवाज़ें अलका याग्निक की, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और शब्द रचना समीर का।

हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं, हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक।

फिल्म अतरंगी से आपने सुना ये प्यारा सा गीत। आवाज़ें थी श्रेया घोषाल की, शब्द रचना इरशाद कामिल का और संगीत से साजा आया था हीरल ने। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो से, आवाज़ें अमन और विनीत सिंह की, शब्द रचना इरशाद कामिल का और संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म फाइटर से, आवाजें बेनी दयाल, शिल्पा राव और विशाल और शेखर का। संगीत से सजा है विशाल और शेखर ने, शब्द रचना कुमार की।

अगला और आखिरी गीत लीजिए, सुनिए फिल्म पठान से, आवाज़ें अरिजीत सिंह, सुकृति कक्कड़ और विशाल और शेखर की, संगीत से सजाया विशाल और शेखर ने, सब तृष्णा कुमार की।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस हमले को गलत बताया है। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिए या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। पलामू जिले से पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि ये अपराधी सड़क निर्माण कर रही एक निजी कंपनी के कैंप पर गोलीबारी करने की योजना बना रहे थे। इनके पास से 2 9 mm पिस्टल, 2 कारतूस, 6 मिस फायर गोलियां, 1 खाली मैगजीन और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP अमित रविदास ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

0: विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन वज्रपात और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 5:02 हो रहे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:05 पर आप सुनेंगे हमारे फौजी भाइयों को संबोधित कार्यक्रम जय भारती। शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा भारत को आत्मनिर्भर बनाने में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की भूमिका। मनोरंजन की जगह हो लोकगीत से सिनेमाई अल्डा और साथियों के स्वरों में आज की भेंटवार्ता का विषय होगा मुर्गी पालक सह विक्रेता उद्यमी से भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे सुरेश मुर्मू और उनसे बातें कर रहे होंगे सुरेश चंद्र मुर्मू। श्रोताओं, आप नागपुरी लोकगीत का आनंद भी ले पाएंगे, रूना देवी और साथियों के स्वरों में, साथ ही वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकेंगे। शाम 6:00 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा शाम 6:02 पर क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा, इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे मौखिक परंपरा से होने वाले लाभ विषय पर। मनोरंजन कीजिएगा हो लोकगीत से मिलानी बोधरा और साथियों के स्वरों में। आज की जो है भेंटवार्ता का विषय होगा लुम्बुद राजा। मनोरंजन कीजिएगा आंधी लोकगीत से बुधराम गोडसर और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, शाम 6:30 पर सुनिएगा हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपने लिखा। शाम 7:00 प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से, यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। श्रोताओं, शाम 7:15 पर सुनिएगा श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 8:00 सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9:15 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। रात्रि 10:00 सुनिएगा गज़लों का प्रोग्राम महफिल हमारे आकाशवाणी चाईबासा केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शुरू के रंग होगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है हमारे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। श्रोताओं, कार्यक्रम जय भारती में आप सभी श्रोताओं और हमारे सभी फौजी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सोनू निगम

फौजी भाइयों, आप सुन रहे थे सोनू निगम, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म बॉर्डर का ये गीत। और अब फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं अगला गीत बी प्राक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है केसरी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप और हमारे सभी फौजी भाई सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, वो गीत हमने लिया है फिल्म वीर जारा से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मन, प्रीथा मजुमदार और साथियों ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज के खेती गृहस्थी के माध्यम से हम चर्चा में हम बातचीत करेंगे भारत की आत्मनिर्भरता में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का योगदान पर और इससे जुड़ी हुई महिलाओं की आत्मनिर्भरता। इसके बाद हम मनोरंजन करेंगे हो लोकगीत से। भेंटवार्ता के माध्यम से भी हम एक प्रगतिशील किसान से बातचीत करेंगे। श्रोताओं, वर्तमान समय में जिस तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वैश्वीकरण के इस युग में या अर्थात 21वीं सदी में अर्थव्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग का है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक नागरिकों को आज के समय में नौकरी देना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक नागरिक को रोजगार देने वाला बनना चाहिए। उनका तात्पर्य था कि हम में जो हुनर है, उस हुनर का उपयोग करते हुए हम अन्य लोगों को रोजगार प्रोवाइड करें ताकि आर्थिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति सक्षम हो सके। और इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भारत सरकार ने 2014 में एक रेगुलेशन पास किया है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार ने गाइडलाइन दिया है, खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए कंपनियों के लिए एक गाइडलाइन है और प्रत्येक कंपनियों को इन गाइडलाइनों का पालन करना अनिवार्य है। वैश्विक दृष्टिकोण से यदि हम देखें अमेरिका, यूरोप या फ्रांस या एशिया महाद्वीप में या यूरोप महाद्वीप में आज बढ़ती हुई आबादी को आत्मनिर्भर करने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है। और खास करके अमेरिका की यदि हम बात करें तो सबसे तेजी से उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है। और भारत ने भी इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत की आत्मनिर्भरता जो परिकल्पना है 2047 तक, जब देश की आज़ादी का 100 साल हम पूरा करेंगे, तब हम आत्मनिर्भरता हम हासिल कर सकें, इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का महत्वपूर्ण योगदान है। 2024-25 में भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जो लाभांश कहना चाहिए 23,000

करोड़ का था उसका, और यही अर्थव्यवस्था 2020 में 16,000 करोड़ का था। यानी जिस तेजी से आज बढ़ रही है वो विश्व में या 21वीं सदी में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज के समय में हमें इस चुनौतियों का सामना के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रोताओं, आत्मनिर्भरता के लिए हमें कई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री क्षेत्र में, माइनिंग क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही है, या विदेशी, या अमेरिका, यूरोप, जापान, इराक काम कर रही है अपनी सुरक्षा के मद्देनजर, हमारे देश को भी इसकी आवश्यकता है। इसके लिए पूंजी की जरूरत होगी हमारे देश को। ऐसी परिस्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हमें उपयोग करना होगा। सुरक्षा के क्षेत्र में ड्रोन, मिसाइल जैसे चीज़ों को भी हमें आविष्कार करना पड़ेगा जो हमारी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक नागरिकों की आर्थिक स्थिति को, आय को दोगुनी करने में यह महत्वपूर्ण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज साबित हो सकता है। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: विकसित किया गया है या फिर इसका किया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस। अच्छा। ये वो विधि है कि मान लीजिए कि आप मानसून में अगर मान लीजिए कि बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर बारिश कम हो रहा है, उस कंडीशन में आप DSR माने कि सीधी बुआई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक तकनीक है जिसमें हम लोग जो सीड ड्रम होता है ना, उसके द्वारा भी हम लोग मान लीजिए कि आप टाइमली नहीं कर सकते, टाइम आपका फेल हो गया, तो आप उसको DSR के माध्यम से डायरेक्ट मैंने धान को थोड़ा सा अंकुरित करके उसको एक DSR तकनीक के द्वारा हम लोग डायरेक्ट यूज करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है उससे भी।
1: अच्छा, उससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बारिश तो होते रहती है, अगर बारिश नहीं हुई, पानी नहीं हुई और सूख गया, उस वक्त में जो बिछड़ा है वो तो मर जाएगा, तो ऐसा स्थिति में DSR का हम
0: कंडीशन में DSR कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ऊपरी जमीन है जहाँ पे पानी हमारा रुकता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट जो हल का पीछे पीछे है ना, उससे भी हम लोग DSR तकनीक के द्वारा भी हम लोग धान हम लोग लगा सकते हैं।
1: अच्छा, एक और जानकारी दीजिए आनंद जी, क्योंकि बहुत सारे दोन जमीन हमारे हैं और आप लोगों के अनुसार या मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी दी जा रही कि बारिश कम होगी, तो क्या ऐसे स्थिति में जो दोन जमीन है, जो हम सोचते हैं कि ये इस पर हम पहले से दोन जमीन का अलग हम खेती करते थे, तो क्या इस प्रकार से जो कम समय में तैयार होने वाली जो बीज है उनको हम उस दोन जमीन में भी लगा सकते हैं?
0: हाँ, अगर इस तरह का सिचुएशन रहा कि बारिश, चूंकि आज के डेट में हमारा मौसम विभाग बहुत ही उन्नत बनाए ये करके फोरकास्टिंग पहले से हो जाता है, 10 दिन पहले दिन का फोरकास्टिंग रहता है कि इस वर्ष का बारिश का सिचुएशन क्या है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग वैसे जगह पे जहाँ पे दोन एरिया जैसे आपने कहा, तो वहाँ पे भी हम लोग कम दिन का जो फसल है उसको हम लोग कर सकते हैं, चूंकि पहले से फोरकास्टिंग है, कर सकते हैं वहाँ पे उसको भी।
1: अच्छा, यानी उन बीजों को जो झारखंड सरकार या कृषि विभाग की ओर से जो अनुशंसा की गई है कि उन जमीनों पर आप ऐसा खेती कर सकते हैं, तो खाली नहीं रहेगा?
0: हाँ, खाली नहीं।
1: अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी, कि क्योंकि वर्तमान समय में यदि हम कृषि को छोड़ देंगे तो अन्न या खाद्यान्न के मामले में तो आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, महंगाई बढ़ सकती है। इसके साथ साथ वर्तमान में जो हमारे जो सरकार है जो युवाओं के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वह आज युवा खेतों को छोड़ करके प्लायन कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, इस प्रकार की खेती की ओर वापस आना चाहिए?
0: देखिए, इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमेशा एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग या समेकित कृषि, समेकित कृषि का मतलब है कि केवल कृषि नहीं, उसमें आप पशुपालन भी कर सकते हैं और बाकी जो बागवानी है, चूंकि आज का जो बारिश जो हो रहा है ना वो टाइमली नहीं हो रहा है और अनइवन हो रहा है, तो उसमें अगर आपका एक क्रॉप अगर फेल भी हो जाता है तो आप उसको पशुपालन के माध्यम से या फिर आपका जो बागवानी जो फसल है उसके माध्यम से भी उसको हम लोग मेरा जो भरपाई है ना उससे हो जाएगा, तो इसको और हम लोग को अग्रसर होना पड़ेगा, उसकी ओर जाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है और विभाग द्वारा समय समय पर हम लोग कृषि विभाग हो या फिर और भी जो अन्य विभाग है कृषि से संबंधित, समय समय पे हम लोग एक्सपोजर विजिट होता है, ट्रेनिंग होता है, हम लोग हमेशा अवेयरनेस का प्रोग्राम हमेशा चलते रहता है।
1: अच्छा, इसमें तो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे युवाओं के पास में है वो पूंजी का, तो पूंजी के लिए सरकार की ओर से क्या प्रावधान है कि यदि इस प्रकार की उनको जो अनुदान से संबंधित हो या बैंक से संबंधित हो, क्योंकि वो लोग कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, परिवार को चलाने के लिए 20-50 हज़ार रुपये सालाना चाहिए या महीना चाहिए, अच्छे जीवन स्तर जाना है तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये हर महीना चाहिए, तो ऐसा इसलिए मैं वो लोग व्यावसायिक स्तर पर खेती करना चाहता है, तो उसके लिए सरकार की ओर से ऐसा क्या चीज़ें हैं जो उनको सुविधा दी जा सकती है?
0: बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी क्या है ना, अभी सारे पश्चिमी सिंहभूम के सारे ब्लॉक में अभी KCC कैंप का अभियान एक चल रहा है।
1: अच्छा।
0: और सारे जगह पे हर ब्लॉक में मीटिंग चल रहा है, तो सभी किसानों से अनुरोध होगा कि आप लोग प्रखंड कार्यालय जाएं और वहाँ के जो कृषि विभाग है वहाँ पे आपको प्रखंड कृषि पदाधिकारी मिलेंगे, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक होंगे, सहायक तकनीकी प्रबंधक है, और अभी वहाँ से जाके आप जो KCC का जो एक प्रोग्राम चल रहा है उसके माध्यम से सरकार आपको कृषि के लिए स्पेशल अनुदान दिया जा रहा है, और वहाँ से आप फॉर्म भरिए, उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ बोला जाता है उसको आप फिलअप करके, क्योंकि अभी ही समय है KCC के द्वारा आपका लाभ लेने का,

0: क्योंकि अभी प्री प्लान खरीद चुकी सर पे आ गया है, एकदम पीक आवर पे आ गया है, तो अभी आप बैंक से जाइएगा तो आपको बैंक के माध्यम से आपको जितनी आवश्यकता है ना, आपका जितना भी खेत है उसके अनुसार से, चूंकि एक प्रक्रिया है, आप पहले उसको फॉर्म को भरिएगा, वो अंचल में जाके आपका प्रक्रिया होगा, और इसमें आपको कुछ समय, दो चार दिन या एक सप्ताह का समय लग सकता है, तो जितना जल्दी आप जाके इसका लाभ लें उतना अच्छा होगा, और जो भी आपको समझना है किसी से संबंधित आप वहां जाके इसका लाभ आप ले सकते हैं।
1: अच्छा
2: श्रोताओं, अभी हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी ले रहे थे कृषि विभाग की योजना के संबंध में। इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

श्रोताओं, इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में आज सांसद ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचा है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा और खूंटी के विधायक राम सूर्य मुंडा ने आज मुरहू स्थित एक आवासीय विद्यालय परिसर में 50 शैया वाले छात्रावास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सांसद ने बताया कि कल्याण विभाग की ओर से लगभग 2,25,00,000 रुपए की राशि से इस छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आज बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज जांच में देरी के कारण वे समय पर परीक्षा कक्ष तक नहीं पहुंच सके और उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। छात्रों ने परीक्षा संचालन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर गुमला सदर अस्पताल परिसर में आज जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने तंबाकू नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने वाले रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बोकारो जिले में 25 वर्षीय एक महिला की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि महिला ने 2 पड़ोसियों के बीच हुए विवाद को शांत कराने का प्रयास किया था, जिस दौरान उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, जिसके बाद एक अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जामताड़ा के गांधी मैदान में चल रहे 20वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय बालिका खो खो प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आज रांची की टीम ने प्रतियोगिता जीत ली। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 18 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबले में रांची ने रामगढ़ को हराया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:02 हो रहे हैं।

श्रोताओं, यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और प्रस्तुत है क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱷᱟᱜᱟᱱ ᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱸᱥᱟᱜ ᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱮᱞᱟᱵᱚᱛᱤ ᱥᱤᱝ ᱵᱚ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨᱟ ᱢᱤᱥᱮᱱ ᱣᱟᱛᱥᱟᱞᱤ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱤᱥᱮᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱮᱱᱠᱟᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱥᱪᱤᱢ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱨ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱮᱸᱜᱟ ᱟᱯᱩ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱚᱫᱤ ᱚᱠᱚᱱ ᱮᱸᱜᱟ ᱟᱯᱩ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱮᱱᱠᱚ ᱱᱮᱞ ᱥᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱤᱱᱟᱹ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱞᱚᱜᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱱᱟᱭᱴᱤ ᱞᱚᱜᱛᱮ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱞᱚᱜᱛᱮ ᱵᱟᱭᱠᱮᱛᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱵᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱫᱮᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱠᱚᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ 18 ᱵᱟᱨᱥ ᱡᱚᱝ ᱱᱮᱱ ᱦᱚᱱ ᱵᱮᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱫᱮᱭᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱮᱸᱜᱟ ᱟᱯᱩᱠᱤᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱨᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱤᱱ 35 ᱵᱟᱨᱥ ᱵᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱚᱲᱟᱨᱮ 115 ᱛᱮ ᱞᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮᱭᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱚᱢᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱥᱵᱩᱜᱤᱱ ᱥᱟᱥᱛᱷᱤᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤᱪᱤ ᱦᱚᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱰᱚ ᱦᱚᱱ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱤ ᱛᱮᱭᱟ ᱡᱚᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟᱦᱚᱱ ᱥᱩᱭᱮᱫ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱱᱤ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱭᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱮ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱩᱥ ᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱨᱟᱜᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱛᱮ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱥᱚᱛᱭᱟᱯᱤᱛ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱤᱱ ᱦᱚᱱ ᱵᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹᱫᱮᱭᱮ ᱡᱟᱱ ᱦᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷ ᱟᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱮᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱞᱫᱮᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱵᱚ ᱯᱟᱭᱴᱮᱫᱮᱭᱮ ᱥᱟᱨᱤᱜᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱦᱤᱱᱟᱹ ᱡᱟᱪᱤᱢ ᱱᱮᱱ ᱞᱟᱵᱷ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱦᱤᱱᱟᱹ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱤᱱᱟᱹᱵᱮᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱵᱮᱱ ᱮᱱᱫᱚ 4000 ᱴᱟᱠᱟ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱟᱨᱭᱟᱞᱚᱭ ᱥᱮᱱ ᱠᱤᱱᱮ ᱛᱮᱨᱮᱭᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱵᱚ ᱤᱫᱤᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱮᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱠᱮᱛᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱚ ᱤᱫᱤᱭᱮᱜᱼᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ 9955131364 ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ 9090070489 ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱠᱮᱛᱨᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱵᱮᱱ ᱤᱫᱤᱭᱮᱜᱼᱟ ᱮᱞᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱟᱹᱞᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱭᱨᱯᱟ ᱢᱤᱫ ᱯᱤᱨᱠᱮᱞ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱤᱭᱟ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱯᱤᱨᱠᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱱᱮ ᱞᱩᱢᱵᱩᱜ ᱨᱟᱡᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱞᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱨᱮᱸᱜᱚ ᱵᱤᱨᱩᱞᱤ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱤᱞᱟᱢᱟᱨ ᱱᱮᱱ ᱯᱤᱨᱠᱮᱞ ᱛᱮᱵᱚ ᱨᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱞᱮᱱ
1: ᱱᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱚ ᱟᱜᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱵᱚᱨᱚᱭ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱛᱮᱭᱟᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱝᱟ ᱱᱤ ᱛᱤᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱟᱣᱨ ᱩᱰᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱯᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱩᱢᱩᱞ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱠᱤᱛᱩ ᱠᱟᱛᱟᱭᱱᱟ ᱩᱢᱩᱞ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱟ ᱵᱤᱭᱩᱨᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱯᱩᱭ ᱫᱚᱨᱚ ᱞᱩᱢᱵᱩᱴ ᱨᱟᱡᱟ ᱥᱤᱝ ᱠᱩᱞᱟ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱠᱟᱜᱮ ᱩᱡᱤᱛ ᱫᱚ ᱜᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟᱹ ᱠᱚᱭ ᱦᱟᱣᱨ ᱩᱰᱤ ᱛᱮ ᱨᱟᱡᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱩᱵᱩ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱩᱲᱤ ᱵᱤᱰᱟᱝ ᱨᱟᱡᱟ ᱵᱟᱯᱟᱨᱤ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱞᱚᱥᱤᱯ ᱦᱟᱥᱤᱴ ᱠᱤᱰᱟ ᱮᱢᱤᱛᱟ ᱵᱮᱪᱟᱨᱟ ᱵᱟᱨᱟᱱᱰᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱥᱤᱰᱤᱭᱟᱱᱟ ᱯᱚᱸᱰᱤᱭᱟ ᱰᱤᱨᱮ ᱵᱟᱨᱟᱱᱰᱤᱭᱟ ᱟᱢ ᱵᱩᱲᱤᱨᱮ ᱠᱚᱥᱚᱰᱚᱨ ᱮᱢᱤᱛᱟ ᱵᱟᱨᱟᱱᱰᱤᱭᱟᱨᱟ
2: ᱟᱛᱮ ᱜᱚ ᱵᱟᱵᱩ ᱟᱯᱩ ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱱ ᱵᱩᱲᱤ ᱯᱮ ᱡᱤᱛᱟᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱦᱤᱛᱟᱨ ᱱᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱱ ᱦᱟᱴ ᱜᱚᱴᱟ ᱦᱩᱵᱟᱭᱱᱟ ᱠᱟᱨᱡᱟ ᱵᱟᱨᱡᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱩ ᱱᱮᱞᱤᱢ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱜᱚᱥᱚ ᱪᱟᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱦᱩᱞᱟᱣ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ
3: ᱟᱢ ᱢᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱜᱮᱢ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱤᱲᱟᱜ ᱛᱟᱯᱛᱟ ᱡᱚᱠᱟᱣ ᱟᱭᱟᱨ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱢ ᱠᱚᱵᱚ ᱵᱟᱞᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨᱟᱱᱰᱤ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱠᱟᱢ ᱨᱟᱪᱟᱢ ᱞᱤ ᱪᱤ ᱫᱟᱲᱤ ᱠᱟᱢ ᱦᱚᱭᱚᱞᱤ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱱᱟᱭᱠᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱠᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱴᱟᱜ ᱵᱟᱴᱟᱜ ᱵᱟᱦᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱟᱠᱟᱛᱤᱝ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱚᱠᱚᱭ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱫᱚᱵᱟ ᱵᱟᱨᱟᱱᱰᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱥᱤᱧ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱜᱮᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱠᱟ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱵᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ
2: ᱦᱟᱯᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱛᱮᱫᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱵᱩᱜᱤᱭᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱯᱟᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱤᱝᱜᱩᱞ ᱜᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱫᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱛᱟ ᱟᱥᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱥᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱵᱮᱱ ᱜᱚ ᱡᱟ ᱯᱟᱥᱨᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱥᱮᱭᱚᱜ ᱥᱤᱝ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱫᱚᱭᱟ ᱫᱟᱵᱩ
3: ᱟᱥᱟᱨᱟ ᱠᱩᱢᱵᱟᱨ ᱨᱮᱢᱟ ᱫᱩᱱᱰᱩᱵᱤᱧ ᱵᱚᱞᱚᱭᱟᱱ ᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱟᱹᱧᱟᱹ ᱠᱮᱢ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱜᱚᱱᱚᱝᱼᱮ ᱡᱟᱨᱤᱭᱚ ᱟᱵᱤᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱨᱮ ᱟᱱᱛᱟᱭᱤᱢ ᱦᱟᱴ ᱰᱚᱝᱜᱚᱞ ᱯᱟᱨᱭᱚᱧ ᱦᱚᱱᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟ
4: ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟ ᱟᱹᱧ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱜᱼᱮᱢ ᱦᱚᱞᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱮᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱠᱚᱛᱮᱢ ᱪᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱧᱚ ᱪᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱞᱚ ᱠᱟ ᱡᱩᱲᱤᱱ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱨᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹ
3: ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱹᱧ ᱦᱚᱱᱤᱧ ᱮᱱᱠᱟ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱢᱟᱞᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱢᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱢᱮᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱧᱟᱜᱩᱫᱟᱨᱟᱭᱟ ᱟᱢ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱟᱹᱪᱤ ᱵᱟᱵᱩ
1: ᱤᱢᱤᱛᱟ ᱢᱟᱛᱠᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱫᱚᱵᱟᱥᱟᱭᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱠᱟᱱ ᱠᱚᱥᱚᱰᱚᱨᱚᱜᱮ ᱟᱢ ᱵᱚᱲᱮ ᱟᱹᱠᱤᱧᱚ ᱠᱤᱱ ᱨᱟᱯᱟᱲ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱢᱤᱛᱟ ᱫᱚᱵᱟ
5: ᱟᱛᱤᱜᱟ ᱚᱠᱚᱛᱮ ᱯᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱭ ᱫᱚ ᱠᱟᱯᱮᱱ ᱮᱞᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱟᱣ ᱫᱚ ᱢᱮᱨᱪᱟ ᱢᱤᱞᱩᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱦᱚᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱪᱤ ᱪᱩᱭ ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱫᱚ
2: ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱜᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱟᱣᱜᱮ ᱟᱹᱣᱨᱤᱵᱮᱱ ᱢᱮᱰᱚ ᱫᱤᱢ ᱥᱤᱜᱮ ᱟᱝ ᱛᱩᱨ ᱥᱟᱥᱩᱢᱮᱱ ᱞᱮᱞ ᱩᱨᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱫᱵᱮᱱ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱭᱞᱮ ᱯᱟᱛᱤᱱᱟᱞᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮᱭᱚᱵᱮᱱ ᱛᱩᱴᱠᱩᱨᱩᱱᱰᱤᱝᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱫᱟᱭ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱨᱚᱵᱮᱱ ᱛᱩᱴᱠᱩᱨᱩᱱᱰᱤᱝᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱵᱤᱱ ᱟᱫᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱛᱚᱱ ᱵᱮᱱ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱨᱮ ᱤᱱᱟᱝ ᱯᱟᱨᱪᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱮᱜᱮ ᱡᱩᱨᱩᱞ ᱡᱩᱨᱩᱞ ᱪᱤ ᱵᱟᱠᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱜᱮᱨᱢᱟᱭ ᱞᱟᱱᱫᱟ ᱠᱚᱫᱚ
5: ᱟᱢ ᱢᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱛᱮᱨᱛᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱪᱤᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱟᱭ ᱥᱮᱫ ᱛᱟ ᱥᱩᱢᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱜᱮ ᱯᱚᱨ ᱯᱚᱨ ᱫᱚ ᱟᱛᱤᱭᱟ ᱪᱤᱵᱩ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱭᱠᱤ ᱡᱟ ᱫᱚᱵᱟᱥᱟᱭ ᱠᱟᱠᱚ ᱦᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱚᱵᱟᱪᱤ ᱵᱟᱨᱟᱱᱰᱤ ᱢᱮᱱᱮᱢ ᱱᱟᱭᱠᱤ ᱟᱥᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱛᱮ ᱥᱟᱵᱤ ᱠᱚᱭ ᱵᱤᱝᱜᱟ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱩᱛᱮᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱩᱛᱮᱨ ᱡᱟᱱᱟ
2: ᱰᱤᱰᱤᱭᱮ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱮ ᱛᱩᱨᱟᱝ ᱰᱤᱰᱤ ᱠᱤᱰᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱞᱟᱭ ᱯᱤᱸᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱜᱤᱫᱟ ᱵᱮᱱᱫᱟ ᱵᱤᱱᱛᱮᱱ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱲᱮ ᱨᱮᱭᱟ ᱵᱤᱸᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱟᱝ ᱟᱸᱡᱮ
6: ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱛᱮᱯᱮ ᱨᱚᱯᱚᱜ ᱢᱟᱛᱮ ᱞᱟᱛᱟ ᱡᱤᱞᱩ ᱨᱟᱥᱤᱭᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱚᱛᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱦᱮᱲᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱩᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱛᱮ ᱜᱚ ᱢᱟᱧ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱡᱤᱭᱟᱹᱧ ᱵᱮᱱ ᱱᱮᱱᱛᱮ ᱠᱮᱨᱮᱬᱮ ᱚᱯᱚᱨ ᱛᱤᱯᱤ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱞᱟᱯᱟ ᱛᱩᱨᱟᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮᱢᱟ ᱟᱹᱧ ᱫᱚᱧ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱪᱤᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱧ ᱠᱟᱢ ᱟᱨᱟᱛᱤᱧ ᱜᱮᱡᱮᱨᱟ ᱥᱟᱸᱰᱮ ᱡᱤᱛᱤᱠᱟᱨᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱵᱚ ᱟᱹᱪᱩᱱ ᱥᱟᱹᱵᱤ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ
5: ᱚᱦ ᱛᱟᱹᱧ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱯᱮᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱮᱥᱩ ᱥᱟᱨᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱡᱤᱞᱩ ᱡᱟ ᱡᱟᱞ ᱪᱷᱩᱴᱟ ᱵᱮᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱛᱮᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱜᱚ ᱢᱟᱭᱤᱝᱜᱟᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱢᱟᱭᱞᱚ ᱚᱣᱟᱨᱮ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱵᱮᱱ ᱤᱧ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱧ ᱠᱚᱵᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱢᱵᱟ ᱡᱟᱱ ᱟᱥᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱥᱟᱨᱟᱱᱪᱤ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱲᱮ ᱥᱤᱧ ᱵᱚᱸᱜᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱭᱟᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱵᱮᱱ
1: ᱤᱢᱤᱛᱟ ᱫᱚᱵᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱯᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱟᱭᱩᱵ ᱥᱤᱝᱜᱮ
7: ᱛᱤ ᱯᱮᱲᱮ ᱯᱮᱲᱮ ᱵᱟᱨᱟᱱᱰᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱵᱟ ᱵᱟᱨᱟᱱᱰᱤ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱯᱨᱚᱢᱮᱭᱟᱱᱟ
5: ᱪᱮ ᱵᱟᱨᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱥᱚ ᱜᱚᱥᱚ ᱩᱠᱩ ᱯᱟᱭᱛᱮᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚᱝᱜᱚ ᱞᱚᱝᱜᱚ ᱱᱤᱠᱟ ᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱭᱩ ᱪᱮ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚ
3: ᱚ ᱟᱭ ᱥᱤᱨ ᱢᱮ ᱨᱤᱝᱜᱮ ᱢᱩᱸᱰᱮ ᱢᱟᱲᱟ ᱠᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱨᱟᱣ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱭᱠᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱡᱟ ᱦᱚᱡᱚᱨ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱟᱭ ᱪᱤ ᱱᱤᱞᱟ ᱥᱤᱝᱜᱟᱨ ᱵᱟᱨᱟᱱᱰᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱭ ᱦᱟᱠᱟᱭᱟᱱᱟ ᱚ ᱦᱚᱱ ᱵᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱧ ᱟᱛᱟᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
5: ᱚ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱟᱢᱞᱮ
3: ᱚ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱟᱢᱤᱭᱟᱹᱧ
5: ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱟᱢᱞᱮ ᱦᱟᱭ ᱞᱚ ᱜᱟᱣᱨᱮᱢ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ
3: ᱞᱚ ᱜᱟᱣᱨᱮᱧ ᱵᱩᱞᱩᱝ
5: ᱦᱟᱯᱟᱱ ᱢᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱡᱤᱜᱮᱢ ᱠᱟᱹᱡᱤᱭᱮ ᱫᱚᱵᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱭ ᱨᱚᱭᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱨ ᱵᱚᱛᱚᱡ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚᱵᱟ ᱵᱟᱨᱟᱱᱰᱤᱱ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚᱵᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱡ ᱞᱩᱴᱨᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱥᱟᱹᱭ ᱥᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱦᱮᱛᱟᱭᱮᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱟᱸᱰᱚᱞ ᱢᱟᱸᱰᱚᱞ ᱛᱩᱨᱜᱩᱞᱩ ᱢᱚᱨᱜᱟᱞᱩ ᱜᱮᱠᱚ ᱜᱚᱜᱚᱞ ᱵᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ
3: ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱮᱰᱟᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱮᱰᱟᱧ
5: ᱪᱤᱱᱟᱢ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱮᱰᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱮᱰᱟᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱮᱰᱟᱧ
3: ᱩᱲᱩ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱮᱰᱟᱧ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱤᱨᱟᱝ ᱱᱟᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱟᱨᱟ ᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ
5: ᱦᱟᱸ ᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ
3: ᱢᱟᱨᱟ ᱯᱟᱨᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱯᱟᱨᱤ
5: ᱩᱠᱩᱨᱤ ᱩᱠᱩᱨᱤ
3: ᱰᱚᱸᱰᱚ ᱢᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱩᱠᱩᱨᱤ ᱩᱠᱩᱨᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱟᱨᱟ ᱯᱟᱨᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱭ ᱠᱚ ᱞᱤᱡᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱡ ᱥᱤᱝᱜᱮᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱯᱥᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱤᱢᱤᱛᱮ ᱫᱚᱵᱟ ᱵᱟᱱᱟᱰᱤᱱ ᱠᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚ ᱩᱲᱩ ᱵᱤᱴᱟᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱭ ᱰᱤᱰᱨᱤᱭᱚ ᱪᱤᱠᱟ
5: ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱚᱯᱚ ᱰᱚᱞᱟ ᱡᱟᱝ ᱱᱟᱞ ᱴᱷᱚ ᱩᱛᱟᱹᱨᱟᱝ ᱠᱤᱰᱤᱧᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱩᱥᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱟᱯᱛᱟᱰᱤᱧᱟ ᱦᱟᱞᱟᱭ ᱵᱨᱟᱱᱰᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱝ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱱ ᱵᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱱᱟᱯ ᱛᱮᱞᱟᱝ ᱤᱰᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱮ ᱵᱨᱟᱱᱰᱤ ᱟᱹᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱰᱚᱸᱰᱚ ᱢᱩᱨᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱰᱚᱸᱰᱚᱝ ᱫᱚᱵᱟ ᱛᱟᱱᱟ
3: ᱰᱚᱸᱰᱚᱝ ᱫᱚᱵᱟ
5: ᱤᱭᱟ ᱰᱚᱸᱰᱚᱝ ᱫᱚᱵᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱠᱚ ᱰᱚᱸᱰᱚᱝ ᱛᱟᱹᱰᱤᱧᱟ
3: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱭ ᱰᱚᱸᱰᱚᱝ ᱫᱚᱵᱟ Gapa hora kuti bai daru ta arilang bepeta juar ge.
5: Juar, e aure. Na do konte ma. Ape do kuna. Ale do matka ma tu do basai.
3: Ale da pondiadi.
5: Pondiadi?
3: Iya iya pondiadi asurete.
5: Asarata. Acha acha juar.
3: Juar juar.
7: Gapa ter do ba hora kuti re dubekan barandi nel horatana. Barandi cedeng bedeng kau boten hoju ten nelki utayante.
5: Juar juar
3: juar juar
5: esum gaadi enada sabi ko sino chwayna
3: iya talain gaadi no tabian gya sine menya buriye kaji nama disum midu chilike mitter na minabute ret sareya kani riob jomta ye idu chimin rabu nepel pure
5: chikna ape sare lida
3: ini de ayarte joma chanapte paitiye lete lida ko lete petetan Utu lida ko, mukuir ko rasi lida, ukeyatin jalkina. Amdo cina ko utuan mia. Amdo unang na arjau tem seno tana. Am citan rige senggel to julina. Rongcang tan ko utuan mia unang. Ada rica bapui paro te do.
5: Ka adaan gica ko ada a. Rua kan ti amate paro ko mita. Aida karre, lita di pilang dami ko e dita ada. Duderai sumare duru ko e sai dilida. Tala hata ko sama alet ko tang lida. Random kandam kubahai ko misetat isin le mit telai omadinya ko bar chitiki kopetap kopetap le dira dira nyujo lena
3: kajim baji hat ram doreya wa tam do dodoro kaji do pondoro muruku muru itne chi mologe molong tada nekam por por dana hudge tana jam menya mutir tina are ingasi me kokorin ke amba sandiwa ini mate bagat bagatiyo आई तो वार को सौर परमी पीड़े को कटावती मूली तो गांडी तड़े मूली मूर सकम कम अतुर चिकम भोको उकुम उतुम उकु तड़े
5: आप अटिकर पटिकर जना होपोंग रेबन सोपोंग जना उकुरिया गिता उतु तो बड़ा गिता जुड़े रे दो अबेन दो मात रेबन दड़कान दो कादान बेन पदा डूड डलिटाओ गिता मात तकिन डिटाड़ा मान हिलता चको उतुले मान अभिनोग द मोल मोलंग बेन मोला तना
3: उटी दारु लाए रे सोली ना बुलुंग लाता रे सिबिल तिया मेर हुआ होटकर हो बोरे ना अटकर अटाली ना आधा रोयन रे दो पाड़ो पेंद रे चौंदन रे बंकुड़े साड़ी दोरो आ का मुली के कुबे का कमा गया मादो अम्मते आयर चनाब गेम तायोम जीत तने इनी मते सीम तने सिम आयर बो पाते जोमा सोदा बर कटाते चनप पाते पसका पदया सो सिम है सिम
7: इमिते के आयर पार मियत तारु कुल उजंता ना आयर कटाकिंग में से चनप कटाकिंग में से दुबा कुल नल के बाराडी चनप पाते निर्तने बाराडी रहता नागिंते ना दुबा निर्तन नल की बाराडी आयर पार मेट किड़ा आरपा मेट कर दो नली इतने मियत कुले उजंतन तो आया उजंतन नेपा दोबारा निर्त्य नमतन यार दोबारा तीरे साबुर की है तीरे साबुर की आकिंग जादुरी है ना किंग कुले पाँच चुंडोले कड़े थे

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपने लिखा।

0: आपने लिखा कि सभी श्रोताओं को आशा पिंगा का नमस्कार, और हमारे साथ हैं आज उदय पान जी। और उदय जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: जी, आपको भी नमस्कार, और हमारे जितने भी श्रोता हमें इस समय सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सबको भी हमारा नमस्कार और जोहार।
0: तो उदय जी, हम देख रहे हैं कि ढेर सारे खत आपके पास में है
1: जी,
0: और कहाँ कहाँ का ये खत है जरा हमें बताइए।
1: जी जी हाँ, आशा जी, खत तो काफ़ी सारे हैं, तो अलग अलग जगहों से जो है हमारे श्रोता जो हमें लगातार सुनते रहते हैं, उन्होंने खत लिखा है, तो एक एक करके अगर हम इनको शामिल कर दो ठीक रहेगा। तो पहला खत ले लूं?
0: हाँ हाँ, पहला खत लीजिए। कहाँ से है
1: जी? आशा जी, पहला खत ये जो है लिखने वाले हमारे श्रोता हैं तुलसीदास महतो, जो गांव हारूडी चांडिल से। उन्होंने लिखा है कि वे आकाशवाणी चायवासा केंद्र के पुराने श्रोता हैं। इस केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जैसे विविधा, रजनीगंधा, किसानवाणी, बांग्ला कार्यक्रम, फिल्म संगीत, और जो लोकगीतों का कार्यक्रम है माटी की महक,
0: अच्छा अच्छा
1: जी हाँ, और उसके बाद आपकी पसंद समाचार आदि बेहद ही उन्हें अच्छा लगता है एवं ज्ञानवर्धक लगता है। और आशा जी, उन्होंने एक सुझाव दिया है। वे कहते हैं कि चायवासा केंद्र से फोन इन कार्यक्रम शुरू किया जाए, और आपने लिखा कार्यक्रम का समय बदला जाए।
0: अच्छा,
1: यानी कि प्रादेशिक समाचार के बाद इसे रखा जाए, ये उनका सुझाव है
0: जी। हाँ, तो उदय जी, ये खत तुलसीदास महतो ने लिखा है। तो सबसे पहले उदय जी, हम इन्हें खत लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
1: जी जी,
0: है ना। और ये भी उम्मीद करते हैं इनसे कि हमारे पास में हमेशा खत इस तरह लिखा रहे।
1: लिखते
0: और आपको याद होगा उदय जी कि ये हमारे बहुत पुराना श्रोता है
1: जी, बिल्कुल,
0: है ना, हमारा कार्यक्रम जो है सुनते रहते हैं
1: जी।
0: और हमें अच्छा लगता है कि इस केंद्र से प्रसारित जो है विविधा कार्यक्रम, रजनीगंधा, किसान वाणी, बंगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत, लोकगीत जो कि माटी की महक
1: जी हाँ,
0: और आपकी पसंद और समाचार, इन्हें बेहद ही अच्छा लगता है और ज्ञानवर्धक भी। हाँ, इनका सुझाव तो ये है कि चायवासा केंद्र से फोन इन कार्यक्रम शुरू किया जाए। बहुत अच्छा सुझाव,
1: बहुत
0: कैसा
1: ही बढ़िया
0: लगा?
1: सुझाव है,
0: है ना, सुझाव अच्छा है। लेकिन जब तक हमें हमारे जो कार्यक्रम अधिशासी जो है, जब तक हमें सलाह नहीं देंगे, हमें आदेश नहीं देंगे, तब तक ये कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाएगा। और उनके लिए वो इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए भी बहुत सारे सुविधाओं का हमें लगाना पड़ता है
1: जी हाँ, जरूरत है,
0: तकनीकी जो भी है करना पड़ता है। और हाँ, आपने लिखा कार्यक्रम भी ये सुनते हैं, अभी भी सुन रहे होंगे
1: जी हाँ,
0: और हमें अच्छा लग रहा है कि ये हमारे पास में खत भी लिखते हैं और ये हमारा ये कार्यक्रम भी सुन रहे हैं। लेकिन इनका ये भी सुझाव है कि ये प्रादेशिक समाचार के बाद रखा जाए
1: जी हाँ
0: जी हाँ। तो हाँ, सुझाव अच्छा है, हम इनका जो सुझाव है हम अपने कार्यक्रम अधिशासी तक जरूर पहुँचाएंगे
1: जी। और इन्होंने खत लिखा, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद,
0: फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो अगला खत जो हमें लिखा है वो हमारे, वो भी नियमित और बहुत ही पुराने श्रोता हैं, शुक्रा नायक जी के, जो हैं खरसावा से हैं, पतिसाई से। वे लिखते हैं कि आपने लिखा कार्यक्रम को, पहले तो लिख रहे हैं कि प्रस्तुत करने वाले उद्घोषक एवं उद्घोषिका को उनका नमस्कार। तो हमारा भी उनको
0: नमस्कार,
1: बहुत सारा नमस्कार। वे कहते हैं कि बहुत दिन हो गए हमारे चायवासा केंद्र से कोई नए कार्यक्रम प्रसारित मतलब नहीं किया गया है, उनका कहना है। वे चाहते हैं कि हो सके तो व्हाट्सएप पर फरमाइशी कार्यक्रम पेश किया जाए। साथ ही सभी श्रोताओं से भी निवेदन है उनका।

0: कि जिस तरह से जो पत्र पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कम से कम आपने लिखा कार्यक्रम में भी ज़रूर हिस्सा लें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। आप किस तरह के कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, आप श्रोता जब तक प्रतिक्रिया नहीं लिखेंगे तो वे लिखते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इस केंद्र से कोई नया कार्यक्रम पेश किया जाएगा। उनका कहना है कि श्रोता जो है अगर आगे आएंगे तो हाँ, ही हाँ, नया कार्यक्रम पेश किया जाएगा
1: जी।
0: तो ये उनका कहना है।
1: तो उदय जी, हम खत लिखने के लिए तो सबसे पहले हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: शुक्रा नायक जी जो कि खरसवा के पति साई से हैं
0: जी,
1: है ना
0: जी,
1: और उन्होंने हमें नमस्कार तो हम भी कहते हैं हमेशा, और वो लोग भी नमस्कार कहते हैं खतों के जरिए, है कि नहीं
0: जी।
1: कम से कम खतों के जरिए ही आप नमस्कार करिए। और आपने लिखा, मैं ये खत ढेर सारे खत लिखे
0: जी।
1: अच्छा, इन्होंने लिखा कि बहुत दिनों हो गए हमारे चाईबासा केंद्र से कोई भी नया कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया है, है ना
0: जी।
1: तो हाँ, अभी तो हमारा कार्य जो हमारा जो स्टेशन है
0: जी,
1: वो तुरंत हम लोग अभी इस चीज़ को हम लोग नहीं कर सकते
0: जी, बिल्कुल।
1: इसे हम जरूर हमारे जो नए कार्यक्रम अधिशा

0: तरह से आप आधारित फार्मेसी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कम से कम आपने लिखा है कार्यक्रम में भी जरूर हिस्सा ले। चलिए, हमारे मुंह की बात उन्होंने छीन ली, आप भी यही चाहते होंगे कि
1: जी सभी यही चाहते हैं
0: जी हाँ। और बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है कि चलिए हमारे श्रोताओं को भी हम ये इस कार्यक्रम के जरिए हम सुकरा नायक जी जो लिखे हैं वो चाहते हैं ये संदेश हम रेडियो के जरिए हम उनको बता रहे हैं अपने श्रोताओं को कि आप लोग जिस तरह से रजनीगंधा फार्मेसी कार्यक्रम में खत लिखते हैं उसी तरह कम से कम आपने लिखा कार्यक्रम में भी खत जरूर लिखें और हिस्सा लें। और हमें, क्योंकि उदय जी आपको तो पता है कि इनके खतों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता
1: है, काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहता है,
0: अभी ढेर पड़ा हुआ है फार्मेसी खतों का, लेकिन आपने लिखा आप लोग भेजते हैं वो भी ठीक है चलिए हाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिस्सा लेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा
1: ताकि हम कार्यक्रम को बेहतर बना सकें
0: जी हाँ जी। और हाँ, इंतज़ार रहेगा कि नया कार्यक्रम भी जरूर पेश किया जाएगा तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। वैसे हमें लगता है कि जैसे कि आज आपने पेश किया है देशभक्ति गीत
1: जी,
0: है ना, उसका
1: जय भारती,
0: जय भारती उन्होंने आपने जरूर सुना होगा जय भारती का नाम, है ना, पहले ये प्रस्तुत नहीं किया जाता था
1: जी,
0: लेकिन
1: जी, जी।
0: अब कुछ दिनों से प्रस्तुत किया जा रहा है तो ये अच्छा है। और भी कोई खत है
1: जी? हाँ, अगला खत है जो एक हमारे श्रोता हैं और पेशे से सहायक शिक्षक हैं, दुमका से उन्होंने लिखा है, बोध बोधरा जी लिख रहे हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: कि उन्होंने लिखा है कि मैं आपके केंद्र का नियमित श्रोता हूँ, मैं आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम न केवल ज्ञानवर्धक होते हैं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी हैं। विशेष रूप से किसान कार्यक्रम यानी किसानवाणी कार्यक्रम की बात कर रहे हैं और खेती गृहस्थी कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। समाचार, सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा भक्ति संगीत मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक एवं लाभकारी सिद्ध होते हैं। आपकी टीम द्वारा स्थानीय भाषा, परंपरा और जनजीवन को जिस सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है वो बहुत ही सराहनीय है। ये कार्यक्रम समाज के हर वर्ग तक सकारात्मक संदेश पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। आशा है कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार उत्कृष्ट एवं उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करते रहेंगे।
0: जी
1: जी, इन्होंने ये
0: जी हाँ कहा तो, है देखिए इतने दूर से इन्होंने खत लिखा है उदय जी
1: जी,
0: बोध बोधरा जी जो कि सहायक शिक्षक दुमका से लिखते हैं,
1: दुमका से जी।
0: और ये इनका घर है अपना बंदगांव। अच्छा। ये बंदगांव के भी हैं
1: जी जी,
0: और हमेशा हमारा कार्यक्रम सुनते ही हैं। मैं आपके केंद्र का नियमित, देखिए ये भी ये नियमित श्रोता ही हैं, हमें खुशी होती है। और ये जो है हमारे स्टेशन से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आर्थिक आभार भी व्यक्त किया है,
1: व्यक्त किया है जी।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ना केवल ज्ञानवर्धक होते हैं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी
1: होते हैं।
0: विशेष रूप से किसान वाणी कार्यक्रम, खेती गृहस्थी कार्यक्रम जो किसानों के लिए होता है
1: जी,
0: है ना, तो उस किसान वाणी कार्यक्रम में जो है चर्चा का विषय भी बहुत अच्छा रहता है
1: जी,
0: और जो इंटरव्यू प्रसारित होता है उसमें जो भेंटवार्ता होती है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से होता है, और जो एक नए किसान उसमें शामिल होते हैं जिनसे इनका इंटरव्यू रहता है,
1: सफल कृषक वगैरह
0: हाँ, क्योंकि हर किसान का खेती करने का तरीका जो है अलग अलग होता है और हर किसान को वो किस तरह से खेती करते हैं, हो सकता है कोई नई तकनीक हो या पुरानी तकनीक हो, ये हमारे किसान वाणी और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सुनाया जाता है
1: जी, जी।
0: तो हर किसान को सुनना चाहिए कि वो किस तकनीक से वो खेती कर रहे हैं। और हाँ, सांस्कृतिक मतलब कि लोकगीत, इसमें हर तरह के लोकगीत हम लोग बजाते हैं किसान वाणी कार्यक्रम में और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में, जो कि बहुत ही मनोरंजन होता है, शायद आपको झुमा भी दे, ऐसी लोकगीत होता है कि नहीं
1: जी।
0: और शैक्षणिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है, विशेष रूप से किसान वाणी कार्यक्रम, समाचार तो सभी को सुनना चाहिए
1: जी,
0: है ना, समाचार के बिना तो हमारा जीवन भी अधूरा रहता है। जब तक हम दूर दराज के समाचार को हम अगर नहीं जान पाएंगे तो हम अनभिज्ञ ही रहेंगे, कुछ हमें जानकारी ही नहीं होगा,
1: जानकारी काफी जरूरी है
0: जी हाँ। और साथ ही साथ भक्ति संगीत, इन्होंने लिखा भक्ति संगीत मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक और लाभकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि भक्ति संगीत ऐसा होता है जब हम सुबह सुबह सुनते हैं उदय जी, मन एकदम भक्तिमय हो जाता है
1: जी,
0: भगवान को याद करते हैं
1: जी, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है
0: जी हाँ। आपने

0: बहुत भक्ति संगीत आपने बहुत ही प्रस्तुत किया है, जो कि आपने आपको अच्छा भी लगता होगा
1: जी,
0: है
1: जी बिल्कुल,
0: और श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगता होगा कि सुबह सुबह यही सब सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, भले बाद में आप फिल्म संगीत का आनंद लें
1: है जी, जी
0: लोकगीत का भी आनंद लें
1: जी।
0: अच्छा, आपके टीम द्वारा स्थानीय भाषा जैसे लोकल भाषा हुई यहाँ के, जैसे हो, मुंडारी, उराव, बहुत सारे बंगला,
1: बहुत सारा जी,
0: और परंपरा और जनजीवन को जिस तरह सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है वह बहुत ही सराहनीय है जी। हाँ, सबका सब समुदाय में अलग अलग
1: विशेषता होती,
0: विशेषता होती है जिसे हम रेडियो कार्यक्रम के जरिए हम उसको प्रस्तुत करते हैं और उन्हें सुनाते हैं
1: जी।
0: तो बहुत ही अच्छा रहता है
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: सुनने लायक रहता है और जानने लायक भी होता है। जैसे कि हम उराव समाज के लिए हम अगर कुछ सुन रहे हैं, बनाए हैं प्रोग्राम, अगर हम जो हम नहीं जानते हैं तो वो जानकारी हमें प्रोग्राम के जरिए हमें मिलती है
1: जी जी।
0: ऐसे बहुत सारे मुंडारी समाज हो, समाज हुआ, तो हम जानकारी देते ही रहते हैं और ये प्रोग्राम होता है विविधा कार्यक्रम में, जो कि ये सब चीज़ होते रहता है, ये सब चीज़ विविधा कार्यक्रम में ही प्रस्तुत होता है
1: जी।
0: और हाँ, इन्होंने लिखा है कि ये कार्यक्रम समाज के हर वर्ग तक सकारात्मक संदेश पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं जी। आशा है कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार का उत्कृष्ट एवं उपयोगी कार्यक्रम का प्रसारण करते रहेंगे। तो बोध जी, बोध बोधरा जी, हम आपको इंतज़ार की घड़ियां, मतलब कि इंतज़ार करवा रहे हैं कि हमारा ये कार्यक्रम जो एक दिन में समाप्त नहीं होता, हम हर दिन कुछ कुछ नए नए कार्यक्रम इसमें देते ही रहते हैं। आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहें, रेडियो के करीब रहें और हमें सुनते रहें
1: और हमें खत भी लिखते रहें
0: जी। हाँ,
1: जी हाँ।
0: और
1: अब आइए अगला खत ले लेते हैं अभी।
0: हाँ हाँ, अगला खत
1: जी,
0: इंतजार तो, कर रहे हैं भाई वो
1: जी, जी जी। तो अगला खत जो है वो निश्चित रूप से हमारे नियम श्रोता ही हैं, संतोष कुमार भगत जी हैं जो घाटशिला से हैं।
0: अच्छा,
1: लिखते हैं कि मैं भी आपका नियमित श्रोता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं,
0: कोई शक नहीं जी,
1: जी। और यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम अपने अपने जगह काबिले तारीफ है, नया साल आ गया है तो कुछ नए कार्यक्रमों की उम्मीद रखते हैं। जैसे आजकल फिल्मी हो या गैर फिल्मी कव्वाली नहीं सुनने को मिलता है, उन्होंने सुझाव दिया है, लिखते हैं कि मेरा सुझाव है कि सप्ताह में एक दिन महफिल कव्वाली नाम से प्रसारित करें तो हम श्रोताओं को खुशी होगी। और वो लिखते हैं कि नया साल आए, किसी को हंसाए किसी को रुलाए, ऐसा कुछ लिखा है
0: जी। हाँ, देखिए आपने लिखा प्रोग्राम जो है वो हर महीने तो नहीं होता है
1: जी, जी
0: हर पांचवें रविवार को ही होता है
1: जी,
0: जिस कारण कभी कभी ये लेट हो जाता है
1: जी।
0: क्योंकि इन्होंने नए साल का जिक्र किया है तो कोई बात नहीं, हम अब उस ये हमारा लिए नए साल से ही जैसा है
1: जी, जी।
0: और हाँ, घाटशिला के संतोष कुमार भगत लिखते हैं, तो खत लिखने के लिए तो हम हमेशा धन्यवाद
1: जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। हाँ, ये भी नियमित श्रोता है उदय जी, आपने तो सुना ही है इनका
1: जी, इनका जो है इनके पत्र हमेशा हमारे जो फरमाइशी प्रोग्राम है उसमें शामिल होते ही रहते हैं
0: जी। हाँ, और हमारे कार्यक्रमों का तारीफ इन्होंने किया है कि ये मतलब कि हर प्रोग्राम जो है वो काबिले तारीफ है
1: जी।
0: नया साल देखिए, ये भी नया साल का जिक्र किया है चूँकि अब हम जून महीने में कदम रखने जा रहे हैं
1: जी, बिल्कुल
0: जी। हाँ, तो बहुत चलिए, आपका सुझाव अच्छा है कि नए साल में कुछ नए कार्यक्रम उम्मीद रखते हैं
1: जी, जी।
0: क्योंकि हाँ, उम्मीद तो सभी कोई करते हैं
1: जी, बिल्कुल
0: है कि नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको भी इंतजार करना होगा
1: जी, बिल्कुल,
0: कि कोई हमारे कार्यक्रम अधिशासी यहाँ आए और कुछ नए कार्यक्रम यहाँ शुरुआत की जाए
1: जी, बिल्कुल।
0: और धीरे धीरे थोड़े से देर होगी, लेकिन आप निराश ना हो, जरूर आप लोग जैसा सुझाव देते हैं
1: जी, जी।
0: आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा होगा,
1: वैसा ही हो।
0: जैसे कि आजकल फिल्मी हो या गैर फिल्मी कव्वाली, कव्वाली है हमारे पास में, कव्वाली है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो उस तरह का ऐसा कोई, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि
1: काफ़ी अच्छा,
0: कव्वाली का भी एक प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे कि एक ही गीतकार होता है, एक ही संगीतकार होता है, एक ही कलाकार है ना, वैसा होता है, उसी तरह एक कव्वाली होना चाहिए, कव्वाली का भी एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें सिर्फ कव्वाली है, क्योंकि कव्वाली जो सुनता है उनका मन भी मचल जाता है कि
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सुनना चाहिए,

0: और जुनराइल जस्टिस एक्ट, हाँ ये भी एक प्रोग्राम इसका भी हो चुका है, आपने शायद आपको याद होगा तो हमने जरूर प्रस्तुत किया इसे। हमें आशा है मेरे सुझाव पर विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। तो जरूर आप हमारा कार्यक्रम जो है विविधा ये हमेशा सुनते रहेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, है कि
1: जी? बिल्कुल, और ऐसे कार्यक्रम भी और भी आते रहेंगे भविष्य में। जी हाँ। और अब अगले खत की तरफ बढ़ा जाए।
0: जी हाँ जी।
1: तो अगला जो खत मेरे पास है वो लिखने वाले हमारे श्रोता हैं निरंजन स्वासी जी, जो कि गिरू पानी से उन्होंने लिखा है।
0: अच्छा हाँ।
1: लिखते हैं कि आपने लिखा कार्यक्रम के आशा दीदी को मेरा प्रणाम। लिख रहे हैं कि मैं गुरुपानी से निरंजन स्वासी लिख रहा हूं। सबसे पहले तो मेरा एक शिकायत है कि आपने लिखा कार्यक्रम कब कब बजता है पता ही नहीं चलता, इसे हर महीने करने से कैसा रहेगा? हम और मेरे दोस्त लोग नन्ही दुनिया कार्यक्रम और फिल्म संगीत सुनते ही हैं। सुबह का विविधा भी अच्छा लगता है लेकिन उस समय हम लोग स्कूल चले जाते हैं इसलिए नहीं सुन पाते। और जी, मैं और मेरे दो दोस्त आपके नन्ही दुनिया में कैसे भाग ले सकते हैं बताने की कृपा करें। और उन्होंने जोहार भी लिखा है।
0: जी हाँ। तो हम लोगों की भी तरफ से उदय जी जोहार,
1: ढेर सारा जोहार जी,
0: है कि नहीं
1: जी?
0: और इन्होंने लिखा, आपने लिखा कार्यक्रम में आशा दीदी को मेरा प्रणाम। जी हाँ
1: जी।
0: आज तो आपने एक नया नाम सुन ही लिया है उदय जी का।
1: जी,
0: उदय भैया का नाम सुन लिया है उन्होंने तो उन्हें भी नमस्कार है मेरे तरफ से। हम आपके तरफ से नमस्कार,
1: हमारे तरफ से नमस्कार भी है और जोहार भी है।
0: जी हाँ। और इन्होंने लिखा है कि अच्छा, इनका एक शिकायत भी है निरंजन स्वासी जी।
1: हाँ जी।
0: तो खत लिखने के लिए तो धन्यवाद तो हम देना भूल गए थे, जो धन्यवाद
1: धन्यवाद देते हैं।
0: उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे पास में खत लिखते रहें,
1: लिखते रहेंगे।
0: अच्छा, इनका शिकायत है कि आपने लिखा कार्यक्रम कब कब बजता है पता ही नहीं चलता।
1: जी।
0: तो हम बता दें कि आपने लिखा कार्यक्रम जो है हर हर महीने तो नहीं बजता है।
1: हाँ,
0: जिस महीने में अगर पांचवा रविवार होता है तो उस रविवार को आपने लिखा कार्यक्रम होता है।
1: जी।
0: तो अगर आप हमेशा हमारे पास में खत लिखा करेंगे तो हम आगे सोच सकते हैं कि इसे हम हर महीना या तो कभी कभी दो बार हम प्रस्तुत कर सकें, एक बार प्रस्तुत कर सकें। लेकिन हाँ, पांचवें रविवार को आप हमेशा तैयार रहिएगा और हमारा कार्यक्रम जरूर सुनेंगे।
1: जी।
0: और इन्होंने लिखा है कि हम और मेरे दोस्त लोग नन्ही दुनिया कार्यक्रम और फिल्म संगीत सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है कि नन्ही दुनिया भी बच्चों का जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है,
1: काफी अच्छा होता है।
0: सुबह का विविधा भी अच्छा है लेकिन हम उस समय हम लोग स्कूल चले जाते, कोई बात नहीं
1: जी।
0: जब स्कूल जाते हैं तो आप पहले स्कूल पूरा कीजिए, उसके बाद जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप विविधा कार्यक्रम जरूर सुनेंगे। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है विविधा कार्यक्रम आप लोग ने भी। फिलहाल तो हम इन्हें यही कहेंगे कि नन्ही दुनिया में ही मन लगाए,
1: जी,
0: है ना। नन्ही दुनिया आपके लिए बहुत अच्छा है और बाकी जो अगर स्कूल से आने के बाद अगर आप जो भी सुनना चाह रहे हैं उसे सुनिए। खेती गृहस्थी है, किसान वाणी है, क्योंकि आप बड़े होकर के आपको भी खेत में उतरना होगा, उतरना भी चाहिए।
1: जी बिल्कुल,
0: है कि नहीं? और कैसे भाग ले सकते हैं? देखिए, भाग लेने के लिए कविता वगैरह, शायरी और
2: की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना,
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हमले को बताया गलत। राज्य में दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। महागठबंधन का दावा, दोनों सीटें जीतने के लिए है पर्याप्त संख्या बल। एनडीए ने कहा पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ। झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में शामिल होने का किया अनुरोध। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन वज्रपात और तेज हवाएं चलने की जताई आशंका, येलो अलर्ट जारी। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में अब से कुछ देर में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आम लोग सरकारी दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों को गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांबरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने का सुझाव दिया है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस हमले को गलत बताया है।
2: हमला कहीं भी लोकतंत्र में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैं मानता हूं कि 15 वर्षों तक वहां की जनता को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी परेशान किया, प्रताड़ित किया। गुस्सा निश्चित रूप से होंगी जनता की, लेकिन राज्य सरकार को देखना चाहिए। कानून को हाथ में जनता को नहीं लेनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से देख रही होगी।
0: राज्य में दो सीटों पर होने वाली राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि महागठबंधन के पास राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है।
3: उनके पास कितनी संख्या है? 24 है, तो कैसे 28 देंगे? ये पार्टी के प्रति जो आइडियोलॉजी में जिनको विश्वास है वह पार्टी चुनाव में विधायकों के लिए करती है, तो ये विधायक कोई भी राज्यसभा चुनाव ये सेंटर का है, आलाकमान का है। आलाकमान ये तय करते, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन की जीत होगी।
0: इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने कहा है कि पार्टी पूरे दमखम के साथ राज्यसभा चुनाव लड़ेगी।
4: आंकड़ा है तो फिर उनको चिंता करने की बात क्या है? अब हमारा संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, हमारी वैचारिक मतभेद है तो हम चुनाव ही ना लड़ेंगे। हम अपने विचारों के साथ, अपने मुद्दों के साथ, अपने लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में रहेंगे। हमारे लिए 81 मतदाता है और उसमें हमको जीतने 28 सीट चाहिए। हम पूरे आश्वस्त हैं कि हमें 28 जीत के आंकड़े मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। इससे पहले श्री चौहान ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा और खूंटी के विधायक राम सूर्य मुंडा ने आज मुरहू स्थित एक आवासीय विद्यालय परिसर में 50 शैया वाले छात्रावास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सांसद ने बताया कि कल्याण विभाग की ओर से लगभग 2,25,00,000 रुपए की राशि से इस छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आज बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज जांच में देरी के कारण वे समय पर परीक्षा कक्ष तक नहीं पहुंच सके और उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में आज सांसद ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है।
5: अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ उसकी सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 12 साल बिताए हैं और 12 साल में जो रिफॉर्म्स है 13 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, 54 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान भारत में 5,00,000 का इलाज हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 5 करोड़ से ज्यादा घर बन गए हैं और 8 करोड़ से ज्यादा गैस का सिलेंडर मिला है। तो सभी फ्रंट्स पे ये देश प्रगति कर रहा है।
0: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर गुमला सदर अस्पताल परिसर में आज जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने तंबाकू नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने वाले रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पलामू जिले से पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि ये अपराधी एक निजी कंपनी के कैंप पर गोलीबारी करने की योजना बना रहे थे।
6: SDPO हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा गया, तो उनके पास से एक बैग में 2 9mm की पिस्टल रिकवर हुई थी और इसके अलावा कुछ गोली उनके पास से बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा राहुल सिंह के गैंग के लिए रंगदारी वसूलने का काम किया जा रहा था, उनके द्वारा यहाँ पे किसी घटना को अंजाम देने के लिए ये सब लोग मिलकर आए हुए थे। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
0: बोकारो जिले में 25 वर्षीय एक महिला की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई ने दावा किया है कि महिला 4 महीने की गर्भवती थी और उसकी हत्या की गई है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। वहीं 2, 3 और 4 जून को उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी जिलों को छोड़कर राज्य के शेष भागों में गरज के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जामताड़ा के गांधी मैदान में चल रहे 20वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय बालिका खो खो प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आज रांची की टीम ने प्रतियोगिता जीत ली। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 18 टीमों ने भाग लिया था। IPL गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। यह मैच अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हमले को बताया गलत। राज्य में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। महागठबंधन का दावा, दोनों सीटें जीतने के लिए हैं पर्याप्त संख्या बल। NDA ने कहा पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ। झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में शामिल होने का किया अनुरोध। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन वज्रपात और तेज हवाएं चलने की जताई आशंका, येलो अलर्ट जारी। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में अब से कुछ देर में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: तीनों कॉलेज में
8: डोंट वरी,
7: फीस तो देखो
9: क्या हाल है, क्या हुआ?
8: फीस की टेंशन,
9: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
8: वो कहाँ है?
9: मिठाई।
10: आरबीआई कहता है
11: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आइए सुनते हैं का
2: जिले में आजकल प्रस्तुत है। जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आकांक्षी जिला चतरा में केंद्र सरकार के सहयोग से किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि
2: घंटरगंज में बाईपास सैंक्शन हो गया, चतरा बाईपास निर्माण हो रहा है, चतरा का रेल लाइन का गजट हो गया, ये भारत सरकार की लाइन ही तो क्या है। दूसरी बात, ये बहुत जगह ऐसे प्रखंड थे जहां आपको पोस्ट ऑफिस नहीं था, कुंदा में पोस्ट ऑफिस नहीं था, लावलंग में पोस्ट ऑफिस नहीं था, राजपुर में पोस्ट ऑफिस नहीं था, गिद्दौर में, इन सारे पोस्ट ऑफिस जो सरकार से रजिस्टर था 20-25 वर्षों से थे, सारे सैंक्शन हो गए। रेल लाइन, कभी हम लोग गया चढ़ने के लिए जाते थे राजधानी, आज लातेहार में हम चढ़ रहे हैं। 32 ट्रेनें राजधानी, केवल चतरा लोकसभा, केवल हंटरगंज या चतरा ही नहीं है, 5 लोकसभा है, सभी लोकसभा के लिए काम हो रहा है। चतरा से डाल्टनगंज की दूरी 60 किलोमीटर घट गया, एक रोड का शिलान्यास होने जा रहा है, प्रशासनिक हो चुका है उसका, यूना टेंडर होने जा रहा है, मैं खुद लगाऊ चंदवा फ्लाई ओवर के लिए।
1: चतरा जिले के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर 851 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि जिला प्रशासन जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहा है।
3: सबसे पहले तो मैं चतरा जिले के 35वें स्थापना दिवस पर चतरा जिले वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और झारखंड अलग राज्य गठन हेतु किए गए आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे या उनके आश्रित हैं उनको आज प्रमाण पत्र, शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया था। पूरे जिले अंतर्गत जो 122 आंदोलनकारी थे, सभी प्रखंडों से हम लोगों ने उनको बुलाया है आज यहाँ पे जिला स्तर पे, और 122 आंदोलनकारी को जो है सम्मानित किया गया है जिला स्तर मुख्यालय स्तर। इसके साथ ही साथ जो संबंधित प्रखंड है, प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने संबंधित प्रखंडों में जो प्रखंड के आंदोलनकारी हैं उनको वहीं पर सम्मानित किया जा रहा है। जिले के अंदर जितने भी हमारे 121 आंदोलनकारी चिन्हित किए गए थे उनको आज प्रमाण पत्र, मोमेंटो एवं शॉल के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है।
1: भाजपा के 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर चतरा पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्रालय के द्वारा महिलाओं और बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए बताया कि
4: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य, जो साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि 6 साल तक के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट लगभग 85% हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आंगनवाड़ी केंद्र की जो हमारी दीदियां हैं उनको प्रशिक्षित कर उनको पोषण ट्रैकर के माध्यम से छोटे छोटे रील्स बनाकर कि वो गर्भवती माताओं को भी, गर्भवती महिलाओं को भी बताएं, धात्री माताओं को भी बताएं, और जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं उनको पोषण के साथ साथ उन्हें उनका बौद्धिक विकास कैसे हो उस दिशा में भी वो काम करें, तो छोटे वीडियो के माध्यम से उनको समय समय पर प्रशिक्षण देकर कि उनका बेहतर देखरेख कर सके, इस दिशा में भारत सरकार कार्य कर रही है।
1: 30 मई को व्यवहार न्यायालय चतरा में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें 238 मामलों का निपटारा किया गया, वहीं 31 लाख से अधिक के सरकारी राजस्व की प्राप्ति भी हुई। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
0: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 7:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदयपान। तो श्रोताओं, आइए करते हैं आपके फरमाइशी गीतों के सिलसिले को शुरू और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जिसे सुनना चाहा है शादुला शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। इस गीत को सुनना चाहा है पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या आदि, बीटी वाडोदे और चंद्रप्रभा वाडोदे। चांडिल ग्राम हारूडी से सुनने ख्वाहिशमंद हैं तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मन महीनी और दीन बंधु महतो। इसी गीत को सुनना चाहा है आमजोड़ा पोखरिया से शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता, शिल्पी लिपि और दीपाली गोप। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म नगीना का ये गीत है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में नगीना फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं, ये खत आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा जी ने ये खत लिखा है। इसी गीत के लिए अगला खत शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से लिखते हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुवी देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव का खत भी इसी गीत के लिए आया है। श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहा है सरायकेला गाँव कीता से राधा कृष्णा गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप और माहिर गोप। इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। साथ ही सुनना चाहा है बड़ा बाम्बो गोपालपुर से संतोषी महतो, जय महतो और बड़ा बाम्बो सुपाई साई से इंद्रजीत, तांती, मधुरानी दास और दृष्टि। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म धरती का ये गीत।

0: श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम का अगला गीत सुने, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नहर में ना बले नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे तो घर आए नहीं हमरे घर है बहुत दुख की बात है तो कम बात हो जाए
8: तुम बुरा मिसिंग काम सोए अनिता थामसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है जापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
9: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम बुंबई कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में उन्होंने ने बागिया तो कि दोनों से आरपी को लो पुलिस को लो उन्हें लड़ाई चलाओ तमा बुरुलम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
10: अलिंग मुनि सुरन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिठा हुरा इनका अली आया न तुम कहीं ना मिल आप ही लेता ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का अगला गीत। येसुदास की आवाज़ में फिल्म का नाम है दादा और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बड़ा बाम्बो सुपाईसाई गाँव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश ललित प्रधान, राजकुमार केशरी, किरण केशरी, श्यामदेव नायक और देवेन जी। चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से बनमाली बेसरा, कोमल बेसरा, बासंती अनु, सिद्ध कुमारी और पूजा। श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहा है चांडिल हारूडी ग्राम से तुलसीदास महतो, मनोरमा कल्पना महतो, मन महिनी महतो और दीन बंधु। इसी गीत को सुनना चाहा है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है बिरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय दुबिहा नेवादा गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय गोला बाजार बक्सर से, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। साथ ही सुनना चाहा है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर, मुस्कान मालाकर, धर्मेंद्र और जितेंद्र। आपकी पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर, और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद है। और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद, रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशी खुशबू, अभी अनीश, अमनिका, आकिंत, अमित, मनीष और मुन्ना। साथ ही सुनना चाहा है कुचाई ग्रामी चाहत से गोलाराम, लुवादा, लुदरी, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनि, बिंजना और समस्त लुवादा परिवार। ग्राम लोसो दिकी से कोमल महतो, पेमी महतो, गोविंद, जीतू, साइमन और समस्त महतो परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीए, राधिका गजबीए, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीए। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म प्यार का मौसम का ये गीत है।

0: अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: करना है। हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేన.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है. अगला गीत सुनने ख्वाहिशमंद है छोटा नेमड़ी छायबासा से बाबू राम शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और ऋतिक कुमार. बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर. महुल्डिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी संतोषी, दीपक संतोष, राहुल, अनुतनु और भाई नंदू महतो. मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, आयुष महतो और गीतेश महतो. डोंगरगांव जिला राज नांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बेबी कनिष्का और तन्मय गजबीय. दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास माणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी. आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में फिल्म विश्वात्मा का ये गीत.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम रजनीगंधा।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनेंगे कार्यक्रम का पहला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। सुनने की ख्वाहिशमंद हैं सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, मोहिनी मीरा मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से सुनना चाह है टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। इसी गीत को सुनना चाह है सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, शुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना और FM शिवा मुंडरी। साथ ही दौलतबाग मुरादाबाद से सुनना चाह है जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म द ट्रेन का ये गीत।

और पेश है अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। पसंद क्या है? अमला टोला चायबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, लाडला टुक टुक गवाणकर। बड़ा निमडी चायबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। ग्राम पंजौनिया, तहसील कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सुनना चाहा है सत्येंद्र चंचौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक और आराध्या चंचौलिया। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म आशिकी का ये गीत।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गांव पोंडा काटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, सुहानी महली, हरसमनी महली, नंदनी महली, संजय सोरेन, साजीव सोरेन, पार्वती महली, पातोर बांकीरा, डोली बांकीरा, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, कृष्णा वर्मा और समर फुलमाली, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता और समस्त बत्ता परिवार, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्मी ये वादा रहा का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। सुनना चाहा है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जीएस रामगढ़िया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। साथ ही धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी और मास्टर शानू ध्रुवंशी। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में फिल्म तेजाब का ये गीत।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

श्रोताओं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। और भाई, सुनते हैं अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। सुनने की ख्वाहिशमंद हैं नाज महसिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना परवीन, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा तैमूर बाबू, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नवासी अबीहा नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख और नवासा मुजम्मिल बाबू, कोकिलवारा और राई ज़िला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख, नुज्जत जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सरिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सलिया, शोएब खान, पोतरा मुजताबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। तो आइए, आप सबकी पसंद पर सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में फिल्म मुद्दत का ये गीत।

और अब श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है बड़ा बाम्बो गोपालपुर से संतोषी महतो जय महतो, बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से इंद्रजीत तांती मधुरानी दास और दृष्टि, आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप प्रेम गोप संगीता शिल्पी लिपि और दीपाली गोप, बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग और मोहित नारंग, अमरगढ़ तहसील शादुल शहर कुलवंत मान, जी हाँ अमरगढ़ तहसील शादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंद्र कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंद्र मान, राजा सिंह मान, कुलविंद्र कौर मान और के एस मान। इसी गीत को सुनना चाहा है रेलवे रोड गंज डुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी और डीएच बच्चन। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में फिल्म गदर का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 8:44 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।

0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीत कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत

0: तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
4: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
3: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
4: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
3: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
4: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
3: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged consumption of traditional summer beverages. Referring to mangoes, a favorite summer fruit, Prime Minister Narendra Modi praised the efforts of farmers, saying Indian mangoes are now reaching global markets from villages across the country. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power Manohar Lal today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratanlal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. On the occasion, the Union Minister distributed loan checks and QR-coded credit cards to street vendors to promote digital transactions and economic self-reliance. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained, and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. Chief of Defence Staff CDS General N.S. Rajasubramani today said the armed forces have consistently demonstrated professionalism and operational decisiveness in safeguarding the nation's interest. He said they remain committed to protecting India's sovereignty and territorial integrity. General Subramani was addressing the media after assuming charge as the country's new CDS.
5: We pay homage to our brave hearts whose valor, sacrifice and dedication to the nation continue to inspire us. We are committed to the welfare of our veterans and Veer Naris. I assure the citizens of India that the armed forces will continue to serve the nation with dedication, courage, honor and professionalism.
3: Admiral Krishna Swaminathan today assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media on the occasion, Admiral Swaminathan said the Indian Navy remains vigilant in safeguarding the nation's interests and is actively deployed in a regional security environment that continues to be challenging, complex, unpredictable and uncertain. West Bengal Governor R. N. Ravi today expressed concern over security vulnerabilities along the India-Bangladesh border, saying that unfenced stretches of the border pose a threat to national security. The governor was speaking to the media at Baghdogra before attending an event in Siliguri. He also stressed the need to strengthen security along the strategically important Chicken Neck Corridor that connects the northeast with the rest of the country. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. More from our correspondent.
6: द भारतीय जनता पार्टी हैज सिक्योर्ड अ मेजर विक्ट्री इन हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस विनिंग धर्मशाला सोलन एंड मंडी द कांग्रेस पार्टी हैज वन द पालमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन धर्मशाला द बीजेपी वन 11 ऑफ 17 वार्ड्स व्हाइल कांग्रेस सिक्योर्ड 5 इन सोलन बीजेपी वन 10 वार्ड्स एंड कांग्रेस 6 इन मंडी बीजेपी डोमिनेटेड विद 12 ऑफ 14 वार्ड्स व्हाइल कांग्रेस वन 1 इन पालमपुर कांग्रेस सिक्योर्ड अ क्लियर मेजोरिटी विद 11 ऑफ 15 वार्ड्स व्हाइल बीजेपी वन 4 काउंटिंग ऑफ वार्ड्स फॉर जिला परिषद एंड पंचायत समिति इलेक्शन has also been completed. Though held without party symbols, both BJP and Congress have claimed victorious of their supported candidates. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
3: Vice President C.P. Radhakrishnan today said that political leadership is one of the most demanding fields of public life and stressed that constructive criticism must remain fair and balanced. The Vice President made these remarks while inaugurating the 140th Foundation Day celebrations of the Deepika Malayalam Daily and presenting the Deepika Excellence Awards at Kottayam in Kerala. He emphasized that journalism should highlight stories of hope, innovation, compassion and scientific progress, noting that such constructive reporting strengthens public confidence and inspires the youth towards nation building. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said, India has transformed from a technology follower to a technology leader over the past 12 years. Speaking in a podcast with Doordarshan News, Dr. Singh said, the country is playing an increasingly important role in the development of frontier technologies and helping shape the future of global innovation. On artificial intelligence, the minister said, India is adopting a balanced approach by combining human expertise with AI-driven systems to enhance efficiency and innovation. In Himachal Pradesh, 8 people lost their lives after their vehicle fell into a deep gorge in the Chamba district. The accident occurred on the Bairagarh-Sachpa-Skillad road in the remote Chura subdivision. The deceased include 7 tourists from Chhattisgarh and the driver of the vehicle. In Myanmar, more than 45 people were killed in a blast at a building in the northeastern part of the country that was reportedly storing explosives used for mining. According to local media reports, around 70 others were injured in the explosion, which occurred around noon in the village of Kongtup in Namkham Township. Rescue operation is underway. The area, located about 3 kilometers south of the Chinese border, is controlled by the Ta Ang National Liberation Army, an ethnic armed group engaged in conflict with Myanmar's central government. In France, a total of 219 people have been injured and over 780 people have been arrested due to clashes between football fans and police across the country following the victory of Paris Saint-Germain against Arsenal in the Champions League final held at Budapest in Hungary. The Interior Minister said security forces are responding firmly to control the situation. In badminton, India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched the men's doubles title in Singapore Open today. The duo defeated Indonesian combination of Muhammad Shohibul Fikri and Fajar Alfian 18-21, 21-17, 21-16 in the final to win their first title in 2 years. The Indian pair had won the Thailand Open in May 2024. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia has congratulated the Indian men's doubles pair on winning the Singapore Open title. In IPL cricket, the high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru is underway at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Put into bat, Gujarat Titans were 143 for 7 in 18.4 overs when reports last came in. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and opted to field. Both teams are aiming for their second IPL title. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and West Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSA deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
7: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासद के तहत उनके गैर मामूली तआवुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदाम और हसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वालशेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर टीचर हैं, जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहत उनके तआवुन को भी सराहा।
4: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
7: खेल कूद के मैदान में भारत की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरिंदर वीर सिंह और उन्मेष गुर्जर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पावनवंशी संतलत के मक्के महर्षि बलार्जुन से मुतल्लिक 6वीं और 7वीं सदी की 3 नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का भी जिक्र किया।
4: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
7: वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन ताबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हुसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिल कदर गहरी मालूमात फराहम होती हैं। वजीर आजम ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
4: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
7: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निजाम के माबैन मजीद इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल हैं। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के जिले पंचकुला में वाके रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजामात के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निजाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निजाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में BJP ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई, वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
8: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में BJP ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड में जीत हासिल की है। सोलन में BJP ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड हासिल किए हैं। मंडी में BJP ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड में वाजे अक्सरियत हासिल की है, जबकि BJP ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम BJP और कांग्रेस दोनों ने अपनी हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
7: انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ اڈیشہ، میزورم، سکم اور منی پور میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کے تحت نمبر شماری کا کام شروع ہو گیا ہے۔ کمیشن نے بتایا کہ ان سبھی اہل ووٹروں کو جن کے نمبر شماری فارم انتخابی رجسٹریشن دفتر کو 28 جون کو یا اس سے پہلے موصول ہو گئے، چناؤ فہرستوں کے مسودے میں شامل کیا جائے گا۔ ایس آئی آر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اہل شہری چناؤ فہرست

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीस फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई, लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सही है,

0: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
1: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूँ समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूँ जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
2: फिल्म तकदीर में

0: इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
1: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
0: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
1: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोता है जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

0: दिन बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।
1: गावा

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

संस्कृति के उपकरण बदल गए पहले कारण करण।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You were listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से कार्यक्रमों का प्रसारण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के दस बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है गज़लों का प्रोग्राम महफिल। गज़लों के प्रोग्राम महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं

श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से आप सुन रहे हैं गज़लों का प्रोग्राम महफिल। अब आइए सुनते हैं अगली गज़ल फनकारा मिताली सिंह और फनकार भूपिंदर सिंह की आवाज़ों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं गजलों का प्रोग्राम महफिल। और भाई सुनते हैं फनकार आशा भोसले की आवाज़ में ये गज़ल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गज़लों का प्रोग्राम महफिल। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमें हाजिर लेकर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के। जी हाँ श्रोताओं, सुरों के रंग कार्यक्रम लेकर हम हैं हाजिर। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है अभिमान।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में श्रोताओं ये था फिल्म अभिमान का गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है गाइड।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं किशोर कुमार और अनुपमा की आवाजों में फिल्म काश का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Man Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है, वो भी भूलिएगा नहीं।